0: RM2 रेडियो मस्ती
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उदास रहे।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू लव यू सुप्रभात घर मिलाते चलिए सुबह की ठीक 5 बजे हैं इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन
1: आरएम2
0: रेडियो मस्ती

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: युगो युगों तक पता नहीं अगर हम गीत मिलन के गाते रहेंगे या नहीं, लेकिन इतनी गारंटी और इतना प्रॉमिस तो ज़रूर करते हैं कि हम 7 बजे तक ऐसे ही मिलकर सुर से सुर मिलाकर हर एक गीत को साथ में गुनगुनाते चलेंगे। चलिए, यहाँ पर 5:06 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल वेंसडे मॉर्निंग, चिल्ड वेदर आउटसाइड। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस विंटर सीजन में किसी को भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और कंबल ओढ़ कर बस अलार्म को स्नूज करते रहने का मन करता है। और कुछ लोग तो शायद मेबी आज आपकी छुट्टी है और आपको ये हैप्पीनेस का एहसास करने का मौका मिल रहा है दैट यू डू नॉट नीड टू सेट अलार्म फॉर टुडे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सुबह उठने की आदत हो जाती है, तो अगर आपका कोई काम भी नहीं है तो आप फिर भी ऐसे ही उठ जाते हैं रेडियो मस्ती का साथ देने के लिए, ओनली टू एंजॉय द ब्यूटीफुल ओल्डीज टिल 7 AM। तो चलिए, जहाँ से भी साथ दे रहे होंगे, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड इट्स योर राइज एंड शाइन, जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 बजे तक, आपके इस सुबह को और भी सुहानी और सुरीली बनाने के लिए ऑफकोर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक गाने, और साथ में आपके मैसेजेस को ज़रूर हम वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294। टू ऑल दोज जिनको थोड़ी कठिनाई हो रही है कंबल से निकलने के लिए, बिस्तर से निकलने के लिए, आपको बस यही कहेंगे कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। एक टाइम पे आपने बस कुछ सपने देखे होंगे और इसको साकार करने के लिए ना हकीकत में जीत और मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बैक टू रियलिटी, एंड आप मेहनत करेंगे तभी तो इसका फल आगे चलकर आप एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए सुबह सवेरे उठकर आप खुद को आईने में देखिए और अफर्म कीजिए कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, और देखिए कि चीज़ें अपने आप कैसे चल जाती हैं एंड चीज़ें अपने आप कैसी ईजी बनती जाती हैं।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चोरी चोरी क्या फ़ायदा प्रेम की डोरी में बंधने के लिए। हम तो चाहते हैं कि प्यार ऐसा हो कि बस चारों तरफ शोर मच जाए कि प्यार कितना है, और प्यार उतना ही ख़ास होना चाहिए जहां पर रोज़ रोज़ इसको एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए आप हमेशा गुड म्यूज़िक का सहारा लो। तो चलिए, यहां पर गुड म्यूज़िक तो चल ही रहा है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच कि आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ अर्ली मॉर्निंग। बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। Good morning, Radio Masti team. Next, gana guzar for Abdul Sarabanu. Have a nice day. Thank you so much. And chaliye yahan par agla gana hum khas taur se dedicate karenge Tony ji ke liye. As usual, bahut hi positive vibes ke saath already connected hain hamare saath. Kehte hain ki good morning. Trust few, everything is real, but not everyone is true. Ye aapne bilkul sahi kaha Tony ji. Kyunki. हमारा जो ट्रस्ट होता है, हमारा जो विश्वास होता है, वो बहुत ही प्रेशियस होता है। एंड नॉट एवरी वन डिजर्व्स दिस ट्रस्ट, इसीलिए सोच समझकर ही लोगों पर भरोसा करना चाहिए। वैसे आप कहते हैं वाओ लवली सॉन्ग फ्रॉम मुकेश जी, जे हम तुम चोरी से जीतू जी एंड नंदा एंड रचल। ये गाना हमने ख़ास तौर से डेडिकेट किया हुआ है टू ऑल दोज जो ओल्डीज को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जितना हो सके आप इस पुराने गीतों का लुत्फ उठाते रहिए टिल 6 AM. Very happy birthday to Susita Sada Singh from husband Kaviraj and all family. And jitne bhi sare log aaj celebrate kar rahe hain apna special day, hamari taraf se bhi unko bahut bahut sara pyar. Good morning Divya, your team in early morning rises. Nice song, hum tum yug yug se. And aap kehte hain ki bachpan se hi aap radio lover hain. और आपका पहला प्यार म्यूजिक है फ्रॉम चांदनी। थैंक यू सो मच चांदनी फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती। नेक्स्ट गाना साथ में हम डेडिकेट करेंगे फॉर मनीष अमर राजा बानिक, जिसे वी हैव कुबलाल फैमिली ऑफ रिविया जुरांपा। वेरी गुड मॉर्निंग आरजे दिव्या एवरी आरजे इज। और साथ में आपने वेदिता को भी याद किया है, सभी लिसनर्स के लिए आपने डेडिकेट किया हुआ है। अगला गाना कमलदीप जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ज्योति जी एज यूजुअल कनेक्टेड हैं फ्रॉम शातु बनारस। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा मदर फैमिली और मेरे लिए भी, दैट्स रियली स्वीट। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड यहाँ पर आप कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग पोटिया 30 years already एंड विशेज कमिंग फ्रॉम विदेश ईश्वी निक्षल वी।

0: मी देवी सुरतन एंड साथ में आप हैं फ्रॉम ग्रैंड बेलेयर एंड थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गीत की ओर एंड अगला गाना टू ऑल दोज जो शायद किचन में खाना बनाते बनाते हमारा साथ दे रहे होंगे. आपको बोको हार्ज एंड डोंट फॉरगेट इट्स योर राइज एंड शाइन जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 AM.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: वेल 5:35 होने को है और कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर, लेकिन इससे पहले चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर. गुड मॉर्निंग कुमार देवी चंद, एंजॉइंग द शो. एंड इस वक्त आप जॉगिंग भी कर रही हैं, इस विंटर में थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. सो थैंक यू

0: You as well. Good morning, Mauritius. Hi, I'm Sharmila from Katribun. Want to dedicate the next gana for Ghabi Girish. Aapki maa hai Janti, Di Simla, Beta Adarsh, Aniket. And yahaan par, unluckily, aapka message thora incomplete aaya hai. Agar ho sake to WhatsApp par aap ye message ek baar phir se forward kar sakte hai. Number wahi hai, 5499-1294. Bas WhatsApp par aapko hume yaad karna hai. चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर एंड ऑफ कोर्स इन गानों के बाद लेकर आ रहे हैं यो डेली हॉरोस्कोप
1: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चले अभी के लिए हम जानेंगे कि दिन के दौरान सितारों की हालचाल कैसे रहने वाली हैं। शुरुआत करेंगे एज यूजुअल एरीज के साथ। मेष राशि, आज चंद्रमा सप्तम भाव में है जिससे साझेदारी और संबंधों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और इसके अलावा आईटी बैंकिंग और जो कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग हैं आपको सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। टोरस वृषभ राशि, नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसाय में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है और वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि, छात्रों के लिए दिन बेहद शुभ है। नौकरी और व्यवसाय में नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। रुके हुए जो कार्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहें। कैंसर कर्क राशि, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, हालांकि मनचाही सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। निवेश से जुड़े निर्णयों पर गंभीरता से विचार करें। प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लियो सिंह राशि, नौकरी और व्यवसाय में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी विशेष प्रोजेक्ट की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में खुशियां रहेंगी और योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। वर्गो कन्या राशि, व्यवसाय और नौकरी दोनों में प्रगति के संकेत हैं। प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। छात्रों को सफलता प्राप्त होगी और प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। लिब्रा तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। बैंकिंग जो व्यापार है उससे जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। खान पान में लापरवाही स्वास्थ्य पर

0: असर डाल सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पुरानी चिंताओं का समाधान मिल सकता है, व्यवसाय में लाभ होगा और नौकरी में सफलता मिलेगी, परिवार में धार्मिक उत्सव का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य और प्रेम और जीवन दोनों संतोषजनक रहेंगे। सजिटेरियस धनुराशि, नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को निवेश लाभ दे सकता है, प्रेम जीवन में सुखद अनुभव होंगे, जो पेट है और त्वचा है उससे संबंधी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है और इससे आपको थोड़ी राहत भी मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, चंद्रमा का सक्षम भाव में गोचर करियर में उन्नति देगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय में बड़े प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं और भूमि या भवन खरीदने का विचार बन सकता है। अक्वेरियस कुंभ राशि, व्यवसाय में सफलता और छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे, नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेने का प्रयास करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और आखिर में वी हैव पाइसेस मीन राशि, आईटी और मैनेजमेंट और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों को लाभ मिलेगा, नौकरी और व्यवसाय में लंबे समय से रुके कार्य आगे बढ़ेंगे, प्रेम जीवन सुखद रहेगा और लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप, हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: You're listening to RM2, a radio must-see.
1: चलिए इस गाने के बाद हम पढ़ने जा रही हैं संक्षिप्त समाचारों की ओर और एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑफ कोर्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कुछ और खूबसूरत गीत।

0: RM2 Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: घर मिलाते चलिए सुबह के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ रजनी जी से। नमस्कार।
7: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। उस

0: ढेक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी, जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को सागर द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सखर स्टामर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की बात की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री जॉन-क्लोड डेलेस्था के अनुसार मॉरिशस को अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के वास्ते सखर स्टामर के उत्तराधिकारी से उम्मीद। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा, जो देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा, एक वास्तविक गेम चेंजर। विदेशी समाचारों में जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, रेडियो सिस्टम में खराबी, पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित। भारत में मानसून में की धमाकेदार एंट्री हुई, 13 दिनों का लंबा इंतजार खत्म। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, जबकि इंग्लैंड घाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0। बता दें कि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में रचा इतिहास, 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मस्करिन्स के दक्षिण में एक काफ़ी जोरदार आंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होती रहेगी, अन्यत्र भी आंशिक रूप से वर्षा होती रहेगी। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में तथा लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:39 पर सूर्यास्त है, जबकि 7:00 सूर्योदय। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: No wonder, guys, कि सच में ये जिंदगी एक गीत है और इसे हर होठों को सजाना होगा और बस ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहना चाहिए. चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. एंड वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेकंड आवर ऑफ योर राइज एंड शाइन, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 AM. एंड यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यार से विश किया है, गुड मॉर्निंग दिव्या. गुड मॉर्निंग जी. नाम तो आपने लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं. नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर शर्मिला जी, आप है काटुबोन से. ओके, आपका पूरा मैसेज व्हाट्सएप पर हमें मिल गया है. नेक्स्ट गाना आपने डेडिकेट किया है फॉर हबी गिरीश, माँ जानती दी सिमला, बेटा आदर्श, अनिकेत, रिहाना, बेटी कमीला, निवेशा, नेहा, भाभी पिंकी, ग्रैंडसन है आधव, सासुमा कविता, ससुर जी धीरज. स्पेशली आप अपने पापा देव को बहुत ही मिस कर रहे हैं, भाई बंटी, जीजाजी विनेश, हु लेफ्ट अस एंड मिस यू ऑल, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच. आपको भी गणपति बप्पा मोरिया. और ऐसे ही साथ देते रहिएगा. अमिता मोहबीर कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती, लविंग द सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच. अनु अब है विल से. एंड अगला गाना जाएगा फॉर ललिता कुमारी, रेणुका, रजनी एंड सुरेखा के नाम. गुड मॉर्निंग, प्लीज प्ले द नेक्स्ट ट्रैक फॉर श्रेष्ठा चतारू ऑफ पिची राफ्रे, सेलिब्रेटिंग हर 15th बर्थडे टूडे. बेस्ट विशेज फ्रॉम फूफू, फूफा, दादा, दादी, पापा, मामा, दीदी एंड भैया की तरफ से, उनको बहुत बहुत सारा प्यार. हेलो डियर, हैप्पी बर्थडे टू माय प्यारे भैया अभिषेक मंगरू, जो हमेशा खुश, वो हमेशा खुश रहें. फ्रॉम दीदी पूजा सानवी, जीजाजी अक्षय, स्पेशली फ्रॉम मामा नलिनी एंड पापा संजय, फ्रॉम काहोलिन, जो इस वक्त आप लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच. एंड चलिए साथ में यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली हेमलता बजन के लिए. डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके परिवार वालों के नाम. फ्रॉम पोएटो पीमा, गुड डे आपको भी एंड आरएम टीम को भी आपने विश किया है. Have a good, good day. Thank you so much. Same to you. Next गाना जाएगा बॉम्बू से. We have धनेश्वर साहब, प्यारी पत्नी के लिए सुनीता, साथ में है संजीव, निशा, मीना, ऋषि, तहान, हंसवी फ्रॉम देवदस एंड सनीचर फैमिली. हाई गुड मॉर्निंग मान. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर अ लवली वाइफ हिमा ऑफ काट्रुबोन. और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. एंड टू ऑल दोस कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आएंगे, ऐसे लाइफ आपको एक ऐसे सिचुएशन में जाकर खड़ा कर देगी जहां पर आप अच्छा भी करोगे ना तो लोग आपको शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि आपको इंटिमिडेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. लेकिन आप हमेशा अच्छा काम करते रहिए एंड डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, और हमेशा टैप योरसेल्फ ऑन द शोल्डर्स एंड कीप गिविंग योरसेल्फ मोटिवेशन, और खुद को आप संभालते रहेंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ संभल ही जाएगी. चलिए 6:24 हो चुके हैं, दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहाँ पर चल रहा है आपका राइज एंड शाइन. नक्श का जन्मदिन है आज, तो उनके लिए बहुत ही सारा प्यार फ्रॉम पापा निजल, मामा निष्टि, जश, गियाना, सीता, ऋषि, स्वीटी, अवी, ट्विन बेबीज हैं भाविया, भानवी, सभी गोईराम फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं. एंड साथ में विना जगेसर, आप हैं बिलवी मुगल से. एक गाना गोज आउट फॉर विकेश कानिया, उनके परिवार के लिए अब अनवी एंड वियान की तरफ से, गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज. सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, एंड ये हमें लेकर जाएगा 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार हैं। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर कैर स्टॉर्मर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री जॉन क्लोड डेलेस्था के अनुसार मॉरिशस को अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर कैर स्टॉर्मर के उत्तराधिकारी से उम्मीद। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोरलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा। राष्ट्रीय सभा में आज भी बजट बहस जारी। बहस के दूसरे दिन कल 19 लोगों का वक्तव्य हुआ। विदेश समाचारों में जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, रेडियो सिस्टम में खराबी, पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित। और भारत में मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, 13 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे, क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से। 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला जा रहा है, जबकि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोली स्कोरर। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर कैर स्टॉर्मर द्वारा पिछले सोमवार को अपने त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री जॉन क्लोड डेलेस्था ने समझाया कि मॉरिशस अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर कैर स्टॉर्मर के उत्तराधिकारी की सहायता पर निर्भर है। फिर भी अगले बरतानी सरकार को इस विधेयक का समर्थन दिलाने के लिए बरतानी संसद को मनाने के लिए काफ़ी कोशिशें करनी होगी। ये बात भी है कि उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का आम चुनाव 2029 के लिए निर्धारित है। शंकलोते ने इस खबर को सुनते हैं जिनसे बात की हमारी सहयोगी राजमिला सीतामणि ने। विवरण सुमेरा अकबर अली।
1: Son successeur, ça m'étonnerait que dans l'état actuel des choses où il aura besoin de pacifier le parti.
2: अब उनके बाद जो ये पद संभालने वाला है, मैं दंग रहूंगा कि क्या पार्टी में सहमति बन पाएगी ताकि वो फिर से शागुस मामले को मद्देनजर रखे। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो अगले चुनावों से पहले ट्रांजिशन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री बन रहे हैं। असल खतरा अगले मतदान के बाद आएगा।
0: राज्यसभा में आज भी बजट बहस जारी है। बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। कल विपक्षी सांसद जोना बेहोंजे ने एक सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि पर्यटन मंत्री ऋषा ढिवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की। उधर लिबा पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे मजबूती कदमों की सराहना की। बजट 2026-2027 की प्रस्तुति के कुछ दिन बाद पिछले शुक्रवार कॉन्फेडरेशन दे ट्रावेयर दे सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट सीटीएसपी ने कल एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। इसके दौरान श्रमिक संघ ने सरकार द्वारा घोषित मुख्य कदमों और मॉरिशस के श्रमिकों व परिवारों पर उनके प्रभाव पर चर्चा की। प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। रियाज चतु के अनुसार पेंशन सुधार नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड NPPF से जुड़ी एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है। फिर भी CTSP प्रस्तावित टारगेटिंग सिस्टम के विरुद्ध है। उसका मानना है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे जनता में कुछ लोग ज्यादा गरीब हो सकते हैं। CTSP के अध्यक्ष रियाज चतु ने कहा,
3: actuellement les 14 000, dans le budget annoncé, les 16 000 et quelques, comment le budget fini voter, mais en 2029, 50% de population qui panne.

0: प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को अपने बजट भाषण में 15 बार रेजिलियंस मजबूती शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार मॉरिशस के लिए यही कदम उठाना चाहती है। उनके अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के लिए यही कोशिश बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ सके। जलवायु की आपातकालीन स्थिति, इनके प्रभाव और तटीय इरोजन के अनुकूल कदम उठाना है। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपये का प्रावधान है। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोरलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्रोग्राम भी होगा। ये एक वास्तविक गेम चेंजर हो सकता है। कुछ अन्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस में कल से रिलीजन फॉर पीस इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई जिसका आयोजन काउंसिल ऑफ रिलीजन्स के सहयोग से किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में दुनिया भर के धार्मिक नेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, शांति और सामाजिक सामंजस्य जैसी समकालीन चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। अनिशा मदाया की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
1: विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक ही मंच पर साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए। शांति, संवाद और विभिन्न समुदायों तथा देशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना।
2: Pela nous pouvons anticiper ban problème actuel, comme par exemple nous na l'intelligence artificielle, nous na la question de la guerre, de la paix dans le monde, na ban thème qui concerne un peu toute l'humanité et qui maya ban religion capable apporte cette contribution.
1: 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में प्रतिभागी कई वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे जिनमें संघर्ष, असमानताएं, जलवायु परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इन चर्चाओं के माध्यम से रिलीजन फॉर पीस का उद्देश्य विभिन्न आस्था समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत करना है ताकि शांति, मानव गरिमा और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
3: मॉरिशस में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है जो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच महत्वपूर्ण है।
4: Among people of faith.
5: Humanism is missing, compassion and humanity.
3: इंसानियत नाम की चीज गायब होती जा रही है, इसीलिए इतने सारे मसले हैं। लोगों का कत्ल किया जा रहा है, जंग है, लोग बैठकर बात करने का सब्र नहीं रखते बल्कि छोटी बात के लिए हिंसा करते हैं।
5: They use violence for the smallest thing.
1: उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने अपने संबोधन में कहा कि मॉरिशस अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यही विशेषता इस टापू को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए एक आदर्श स्थल बनाती है।
6: Une valeur religieuse et spirituelle capable de jouer un grand rôle.
3: दुनिया में जो मसले हैं इनके हल ढूंढने के लिए मजहबी और रूहानी अकदारों की बड़ी अहमियत है। ये सम्मेलन इंसानियत के लिए अहम है। मैं सभी सिफारिशों को मद्देनजर रखूंगा।
1: आने वाले दिनों में सम्मेलन के कार्य विभिन्न विचार विमर्श सत्रों और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रहेंगे जिनमें अलग अलग देशों से आए धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।
0: 4-5 दिनों से क्यूपिप के कई इलाकों में जलापूर्ति में कटौती लाई जा रही है। बावजूद इसके कि जल वितरण के लिए नई समय सारणी लागू की गई है, ये स्थिति बरकरार है और निवासी काफी नाखुश हैं और इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार कटौती के चलते क्यूपिप के मेयर तशाना लक्ष्मणापिले कपुलू ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की और स्पष्टीकरण की मांग कर रही है तथा साथ में आपातकालीन कदम उठाने की भी मांग कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो। सुमेरा अकबर अली।
7: मोफिन कॉम्प्रेंड की चीना एन प्रॉब्लम दे वाल्व दे पोर्ट।
8: टेक्नीशियनों ने बताया कि वाल्व में कुछ खराबी थी, नल से पानी नहीं आ रहा है। मसला ये है कि अवाम से कहा गया है कि पानी की सप्लाई मुकर्ररा वक्त पर की जाएगी लेकिन ये लगता है कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ये सही नहीं है कि आप एक वाटर टैंकी की मांग करें लेकिन कई दिन बीत जाने पर आपके यहाँ कोई ट्रक नहीं आती। इसके अलावा रोज आपको एक नया रेफरेंस दिया जा रहा है। CWA मांग कर रही है कि दोबारा घर पर नया इंस्टॉलेशन करें। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो भी फौरन।
7: Beaucoup pas capable à fond de faire ça. Et surtout là tout de suite, surtout qui de l'eau lit une nécessité de nous laver.

0: vie de tous les jours.
1: उधर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने समझाया कि सूखे के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और देश के कई इलाके इससे प्रभावित हैं। CWA की संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में कोशिशें की जा रही हैं ताकि उपभोक्ताओं के लिए नाखुशी को सीमित करने के वास्ते जहां तक हो सके नियमित रूप से जल वितरण की जा सके। एक बार फिर से सुमेरा अकबरेली को सुनते हैं।
2: Moi, je connais qu'il y a beaucoup de complaintes. Le problème est un petit peu plus compliqué durant le week-end, surtout samedi qui est passé, surtout de Kuapi et de la région de Floréal, de Vakwa, qui nous à l'écoute de tous ces bandes complaintes.
3: हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। वीकेंड के दौरान ये मसला और भी संजीदा बन गया, खासतौर पर गए शनिवार को क्यूपी फ्लोरियाल और वाक्वा में हम सभी शिकायतों पर काम कर रहे हैं। हम सर्विस रिजर्वोर पर करीब से निगरानी रख रहे हैं जो इन इलाकों में पानी की सप्लाई करते हैं। हमारे कर्मचारी भी उन जगहों पर जा रहे हैं जहां प्रेशर नहीं है। हम वाल्व ऑपरेशन भी कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी जब पानी को बंद करते हैं तो पाइपों में हवा आ जाती है। ये छोटी समस्याएं हैं लेकिन जल आपूर्ति पर इनका बड़ा असर है। जिन लोगों के यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, जो पहली मंजिला पर रहते हैं या जिनके टैंक पहली मंजिला पर हैं, हम इन लोगों के यहाँ पानी टंकियाँ भेज रहे हैं जब तक कोई टेक्निकी हल ना मिले।
2: Nous avons un système de camions citernes qui nous met en place. Surtout dans le cas que nous pas fait apporter une solution technique tout de suite.
1: और मौसम संबंधी ये जानकारी, मास्कारेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मेट्रोलॉजिस्ट यशवीर रामलखन के अनुसार अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पूरे इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चलेंगी। समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में समुद्र खराब ही रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कुछ इलाकों में समुद्र में जाना मुश्किल होगा। उन्होंने हमारी सहयोगी अंजलि सिराथनफुरजन को अतिरिक्त जानकारियां दी।
3: एक एंटी साइक्लोन हमारे इलाके के नजदीक है, इसीलिए ठंड महसूस की जा रही है। हल्की बरसातें हो रही है, खासतौर पर हवाई ढलानों और ऊंचे इलाकों में। आने वाले 3 दिनों के दौरान ऐसा ही ठंड मौसम बरकरार रहेगा जब तक ये एंटी साइक्लोन इलाके में मौजूद रहेगा। जो ही वो दूर जाएगा, रह रहकर बारिश होगी, खासतौर पर देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में। समुद्र खराब ही रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में और आमतौर पर दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त करते हैं।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। जर्मनी की ट्रेन राष्ट्रीय रेलवे कंपनी डॉयचे बान ने मंगलवार शाम को संचार प्रणाली में आई गंभीर खराबी के कारण पूरे देश में सभी ट्रेनों को रोक दिया। इस वजह से जर्मनी भर में रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गई है। और कंपनी ने बताया कि डिजिटल रेडियो सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों को निकटतम स्टेशन पर रोक दिया गया। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। भारत में नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बैठक के 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद कल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें इन सभी सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका बहुत अहम है। ये सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाना, ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को समर्थन देना और एक सुरक्षित, मजबूत और समावेशी दुनिया बनाने में योगदान देना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कप्तानी में भारत को T20 विश्व कप 2024 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को पिछले 2 दशक में भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन में रोहित शर्मा को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक

अलंकरण समारोह द्वितीय में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिव सोरेन मरणोपरांत और पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने सम्मान प्राप्त किया। वहीं टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय कलाकार और माधवन को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने कल कलमों से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। विभिन्न भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए। और समाचारों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारत में ही रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में आगे बढ़ चुका है। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। तपती धूप, उमस और भीषण गर्मी से बेहाल मुंबईकरों के लिए आखिरकार वो सुखद पल आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 13 दिनों की देरी के बाद कल माया नगरी मुंबई में अपनी आनंदपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा दी। सुबह की शुरुआत गरज चमक और झमाझम बौछारों के साथ हुई, जिसने शहर की आबोहवा में एक नई ताजगी और सुकून घोल दिया। और विश्व फुटबॉल कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार हैं। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से। इंग्लैंड गाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0, जबकि सुबह 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला जा रहा है। ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में रचा इतिहास, 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दाग कर उन्होंने यूएसबीओ का रिकॉर्ड तोड़ा और उसने कैरियर की 975 गोल पूरे किए। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। मास्कारेंस के दक्षिण में काफ़ी जोरदार आंधी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और ज़्यादा बादल गिरने लगेंगे। बारिश भी होगी, मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊँचाइयों पर। दोपहर बाद में बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से सेंट्रल प्लेटू पर, और अन्यत्र आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, दक्षिण में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में और लगुनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 7:45 बजे सूर्योदय, जबकि शाम 5:39 पर सूर्यास्त।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद साथ ही हम कहेंगे अपने टेक्निकी सहयोगी फैजन को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: बैलेंस रोड प्लेन मायो में 75 साल के 75 years old के जनाब यूसुफ लक्ष्मण जो ईसुप नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन की 10 बजे आज सुबह 10 बजे उनके बेटे जनाब ईशाइद लक्ष्मण के घर बैलेंस रोड प्लेन मायो से उठाकर दफनाने के लिए प्लेन मायो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रूथ रॉयल बुबासे में ला शपेल एलियनसंस में 74 साल के 74 years old के श्री क्षत्रपति कलाचंद जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे और पहले क्राउनलैन चोरी थोंकब रहते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे लाशा पहले एलियन सन्स और थोयाल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले दिपहत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 AM। एंग्रे मार्शियल स्ट्रीट कुले में 73 साल के 73 years old की श्रीमती तारा कोतवारू पैदाशी नाम कुसा जो रानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री रवि कोतवारू के घर आगरे मास्याली श्री टुकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। रोथ रॉयल इजी दो रोज में 70 साल के 70 years old के श्री आत्मप्रीत सिराज जो मातो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर रोथ रॉयल इजी दो रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थुदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 12:30 PM। बोपलॉन रोड कैलबास में 79 साल के 79 years old की श्रीमती कलावती देवी जीवन पैदाशी नाम सिदानी जो सबिता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री कवि जीवन के घर बोपलॉन रोड कैलबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस त्रियोले के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर टू बी एवेन्यू बेलरोज में 68 साल के 69 years old की श्रीमती उमावती हरगोबिन पैदाशी नाम राधोआ जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पति श्री रोहित हरगोबिन के घर नंबर टू बी एवेन्यू बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। नंबर ग्यारह स्टैनले कैटरबोर्ड में 73 साल के 73 years old के श्री दिलराज मोहाबीर सिंह जो राज नाम से भी जाने जाते थे और कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पुराने पर्सनल मैनेजर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर नंबर 11 अवेनी स्टैनले कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। रूथ रॉयल बोनाके में 101 years old की श्रीमती धनवंतिया भिनिक पैदाशी नाम सिपुल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी और श्री मनु भिनिक की माँ थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोथ्वायर बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:03 PM। बेलरीव रोड एमिताज फिनिक्स में, बेलरीव रोड एमिताज फिनिक्स में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमंत कुमार तोवाक, श्री हेमंत कुमार तोवाक पैदाशी नाम जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर बेलरीव रोड एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गजेब वहोद कॉफोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Wake up with the sun and the sound of fun. RM2 Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: कितना नचाएगा बसंती को, थक गई है बिचारी नाच नाच की, उम्र भी तो हो गई है, नचाओ उनको जो हमारे साथ बैठ कर अभी यहाँ पर गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं, उनको नचाओ जो घर पर हैं और उनको थोड़ा लेजी फील हो रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सुबह के 7:18 हुए हैं, आप वरिता का साथ दे रहे हैं और आपका मॉर्निंग बीट जो है चलेगा 9 तक। ये तो मैं जुल्म कर दूंगी अगर मैं आपसे पूछूं होप यू हैव अ गुड टाइम। मॉर्निंग में कौन कहता है कि हैविंग अ गुड टाइम, सब कहते हैं इतना स्ट्रेस होता है, तैयार होना होता है, बाहर निकलना होता है, गाड़ी चलानी होती है, बारिश हो रही होती है, कोई अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहा होता है, कोई अपनी चीज़ें भूल रहा होता है और ऐसे में आप बोलोगे हैविंग अ गुड टाइम, लेकिन ये सब सोचने वाली बात है। जब आप अपने माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हो ना और उनको बोलते हो कि भाई आज सब कुछ अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा होता ही है, ट्रस्ट मी ये होता है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो टेंशन के साथ मत उठा करो, स्ट्रेस के साथ मत उठा करो कि अरे देर हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब अपने दिमाग को आप पहले ही ये बता दोगे ना, तो आपका दिमाग वही करेगा जो आपने उसको बताया। इसीलिए दिमाग को हमेशा शांत रखो और मैं हमेशा कहती हूँ अलार्म बजा, बंद करो, उठो, अपने बेड पे बैठो, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, फिर उसके बाद बोलो कि हाँ भाई आज का दिन हमें क्या करना है, आराम से सोचो क्या करना है, ठीक है ये करना है, वो करना है, ये करना है, चलो शुरू करते हैं। और अपने मन को भटकने मत दो। कभी कभी क्या होता है, दोस्त सुबह सुबह रील्स भेज देते हैं, तो आप एक बात एक रील देखने लगते हो, फिर आप कहते हो कि इसने मुझे ये रील भेजा है, मैं कुछ और भेज देता हूँ, तो आपका टाइम जो है आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है, फिर टेंशन तो होगी ना। इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग में पहले अपने आप से मिलो, फिर उसके बाद बाकी लोगों से मिलो। चलो भाई हम तो आज मूड में हैं, हम डांस करने के मूड में हैं, अगर आप भी मूड में हैं तो प्लीज लेट मी नो ऑन 5491294।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: दिलबर दिलबर, लेकिन आजकल तो गाने होते हैं बिल भर क्योंकि आजकल प्यार महंगा हो गया है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सुबह के 7:25 हुए हैं एंड आपको पता है कि हम जब यहाँ आते हैं मॉर्निंग में, हमारा काम होता है आपके लाइफ से स्ट्रेस को इतना दूर भगाने का, उसको ख़त्म कर देने का। लेकिन पता है बार बार आप लेकर आ जाते हो, ये आपका अनवांटेड गेस्ट होता है, बिन बुलाए आप उनको बुला लेते हो जबकि हम यहाँ पर आपकी खिदमत पर बैठे रहते हैं। चलो कोई नहीं, अभी अगर कोई स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, आज किसी का बर्थडे भी हो सकता है, वो अकेला भी फील कर सकता है, ये भी सोच होगा कि भाई काश हमें भी कोई स्पेशल डे बना दे आज हमारा बर्थडे को, तो हो सकता है ना। अब लोलो हाइपरमार्केट का काम ही है लोगों को खुश करना। मोगैम्बो खुश हुआ हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो अभी हम कॉल करने वाले हैं जिनको आज उनको सरप्राइज करने के लिए, वो

0: जरूर खुश हो जाएगा. तो चलिए उनका नंबर और उनका नाम आप हम तक पहुंचा दीजिए. नंबर है 5491294. लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से देखते हैं कि आज वो कौन है जो बनेगा हमारा बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल.
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बेबी डॉल में सोने दी जी हाँ बिल्कुल हमारी घर की जो बेटियां होती हैं वो भी हमारी बेबी डॉल ही होती हैं और आज एक बेबी डॉल का बर्थडे है अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल चली गई हैं लेकिन यहाँ पर उनकी दादी हमारे साथ हैं हेलो नमस्कार
3: हेलो नमस्ते
2: नमस्ते जी आपका नाम क्या है
3: उमा
2: उमा जी कहाँ रहती हैं आप
3: कॉटेज
2: कॉटेज और आज इशिता का बर्थडे है ना
3: जी हाँ
2: ओके तो अभी इस समय आप रेडियो मस्ती पर लाइव है एक्चुअली हमने उनको सरप्राइज करने के लिए कॉल किया था लेकिन पता चला कि वो स्कूल चली गई हैं सो दादी जी आप अपनी बेटी को अपनी पोती को कुछ कहना चाहती हैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हैं हमारे साथ
3: वो तो नहीं सुनते हैं
2: नहीं सुने हाँ अभी तो
3: स्कूल चल गए हैं
2: हाँ स्कूल में है पता है लेकिन आपकी तरफ से कुछ कहना चाहोगी आप अपनी बेटी को हैप्पी बर्थडे जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना चलिए जी तो अनफॉर्चुनेटली इशिता हमारे साथ तो है ही नहीं लेकिन दादी जी मैं आपको बता दूं कि इशिता को मिल रहा है रेडियो मस्ती की तरफ से यानी कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर अब वो वाउचर जो है उनको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा MBC यानी कि उनके मम्मी या पापा को आना पड़ेगा MBC आज नहीं तो कल ID कार्ड के साथ और फिर उसके बाद उनको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात करी है और इशिता को हमारी ओर से बहुत सारा प्यार भेजिएगा उनको हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा और आपको भी हमारी ओर से शुभ दिन थैंक यू सो मच
3: धन्यवाद

0: good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musti.
2: And my dear friends, भूलिएगा नहीं कि थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ. स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अरविंद से मिलेंगे इस गाने के बाद.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: एंड यस चलिए समय हो गया है मिलते हैं अरविंद से. अभी तो आपको पता ही है वर्ल्ड कप चल रहा है. अरविंद हमारे लिए लेटेस्ट खबरें लेकर आए हैं. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच बढ़ने लगा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाते हुए क्रिटिक्स का मुंह बंद किया. इंग्लैंड के लिए रियलिटी चेक. गाना ने थ्री लायंस को उनका धारणा बंद किया. और क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिच के लिए डबल सेंचुरी इंटरनेशनल कप.

0: रोनाल्डो इज बैक, पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कह सकते हैं फॉर्म टेम्पोरेरी है पर क्लास परमानेंट है। अपने दूसरे मैच में रोनाल्डो का जादू चल पड़ा, 6 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बना CR7। जब रोनाल्डो चमकता है तो पोर्टुगल पछाड़ता है। 5-0 से सिलेसाओ ने उज्बेकिस्तान की धुलाई की। उज्बेकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप है, इससे बहुत कुछ सीखेगी ये टीम। रोनाल्डो का डबल, नूनो मेंडेस का एक गोल, नेमातोव का ऑन गोल, फिर राफेल लियाओ का गोल फिएस्टा पूरा किया। गाना ने इंग्लैंड को रोका। पहले मैच में 4-2 की जीत के बाद द थ्री लायंस कुछ ज्यादा ही दहाड़ रहे थे। गाना के सामने इंग्लैंड की टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही। इंग्लैंड 0-0, ब्रूटल रियलिटी चेक, ऐसा टोमा टुरेल ने कहा। जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया था पहले मैच में, उससे उम्मीदों और उत्साह का स्तर काफी बढ़ा दिया गया था। लेकिन गाना के खिलाफ मैच इंग्लैंड के लिए हकीकत का एक बड़ा सामना साबित हुआ, क्योंकि गाना की शारीरिक ताकत, बेहतर तालमेल और लड़ते रहने की क्षमता इंग्लैंड के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। ग्रुप एल में इंग्लैंड आगे है 4 अंकों के साथ। गाना के पास भी 4 अंक है, क्वालिफिकेशन के लिए काफी है, पर किस नंबर से ये जानना बाकी है, क्योंकि क्रोएशिया ने भी अपनी जीत हासिल की, पहली जीत हासिल की। एम्ब्लेमेटिक कप्तान लुका मोड्रिच के लिए ऐतिहासिक दिन था क्रोएशिया के साथ। उसका 200वां मैच, डबल सेंचुरी, 1-0 से क्रोएशिया ने पनामा को हराया। मतलब पनामा वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा, जबकि क्रोएशिया के चांसेस अभी तक हैं। इस ग्रुप में इंग्लैंड का आखिरी मैच पनामा के खिलाफ है और क्रोएशिया वर्सेस गाना दोनों मैच इस सैटरडे को एक ही समय रात के 1 बजे। अभी ग्रुप के का मैच चल रहा है मेक्सिको और कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच। सेकंड हाफ शुरू हुआ है, स्कोर 0-0। आज ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच खेले जाएंगे, दोनों मैच एक ही समय रात के 11 बजे, एक ही समय, ताकि कोई हेर फेर ना हो। बोस्निया का मुकाबला कतर से होगा, स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से। ग्रुप सी के मैच भी आज खेले जाएंगे, इसमें ब्राजील और मोरक्को दोनों के पास 4-4 अंक है, स्कॉटलैंड के पास 3। सो आईची का मुकाबला मोरक्को से है, जबकि ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के खिलाफ। इन सब मैचों पर थोड़ी देर बाद आपको ज्यादा जानकारियां देंगे। कल सुबह भी 5 बजे ग्रुप ए के 2 मैच हैं, चेक रिपब्लिक मेक्सिको और साउथ अफ्रीका कोरिया। कुछ अन्य खबरें प्रीमियर लीग से, ट्रांसफर न्यूज, गैरी ओनील इप्सविच का नया मैनेजर बन गया है। वो पहले वुल्व्स और बोर्नमुथ और स्ट्रासबर्ग में था। किरेन मैकेना का स्थान लेगा इप्सविच में। अर्जेंटीना का स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज एटलेटिको मैड्रिड छोड़ना चाहता है, अपना सपना पूरा करना चाहता है। बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन और रियल मैड्रिड उसके पीछे हैं। हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड की ओर से 130 मिलियन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट का राजकुमार, युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में T20 सीरीज के लिए पहली बार वैभव को इंडिया की सीनियर टीम में जगह मिली है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच और इंग्लैंड में T20 सीरीज। वैभव टीम इंडिया के लिए एशिया कप में भी खेलेगा। उधर भारतीय वुमेन टीम कल T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की महिला टीम का सामना करेगी। टेबल में 3 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास है 6 अंक, इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के पास 4-4 अंक है। So that's it, the latest from the sports world. I'll catch you again at 8:30 for the latest from the World Cup or World Cup special. जरूर सुनिएगा. Take care. Bye bye.
1: Thank you, Arvin. मिलते हैं थोड़ी देर में.
2: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal. Low tiles 60x60. Super sales. Low granite quartz. Prix cassé. Low lavoir. La lumière moderne. Prix choc. Low.

0: Show.
1: James. RM2, Radio Musty, in the mix.
2: चलिए भाई, समय भी हो गया है और हम अगले गाने के साथ बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे के समाचारों की ओर. उस पार मिलते हैं अपने प्रोग्राम के साथ जो कि है मॉर्निंग बीट.

नमस्ते भजरे के 8 बजकर बाब सुना भोजपुरी में समाचार। सबसे पहली स्थानीय खबर, हाउ विधेयक से जुड़ा अनिश्चितता बढ़ते जात पा जेकर बदौलत यूनाइटेड किंगडम के धने से मॉरिशस के सागर द्वीप समूह के वापसी पर ही समझौता के अमल में आने जा सकी। बरतानी प्रधानमंत्री सखैर स्टॉमर देने से कल सोमवार के अपन त्याग पत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनलबा। लेखक आर पुराना विदेश मंत्री डॉक्टर जलेस्थाक समझाइलन कि मॉरिशस अब ई प्रक्रिया के आगे बढ़ाए का तीन सकैट स्टॉम्बा के उत्तराधिकारी की सहायता पर ही निर्भर बा। फिर भी आवत बरतानी अगला बरतानी सरकार के ई विधेयक के समर्थन दिलाए खातिर

0: लेकिन बरतानी संसद के मनाए खातिर काफी कोशिश करे के पड़ी। ये बात भी बा कि उनकर कार्यकाल काफी छोटा हो सकेला कहे कि यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव 2029 खातिर निर्धारित बा। राष्ट्रसभा में आज भी बहस जारी बा। दिन के 11 बज के आधा पर ही कार्य जारी रखा जाए। काल बजट पर ही बहस के दूसर का दिन पर ही 19 लोग के वक्तव्य होल। विपक्षी सांसद जाना बेहोंजे एगो सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने के प्रस्ताव रखंग जेकन से वर्तमान में कुछ समृद्धि के इस्तेमाल काल के बदलाव खातिर करल जा सकी। पर्यटन मंत्री ऋषा दीवाल बजट 2026-2027 के प्रावधान की सराहना करलन। वो मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास के उल्लेख करलन और आगे बतैलन कि देश नवा नवा मंडी खोजे के चाही जैसे कि पूरब यूरोप रूस और गल्फ के देश में। हुआ लेबर पार्टी के सांसद राबीराज बिचू बोलन की सरकार के कार्यकाल के शुरुआत से ही वित्तीय कंसोलिडेशन मजबूती करल जात बा। वो कृषि उद्योग के गतिशील बनाए खातिर निर्धारित कदम आर मैटरनिटी आर पैटर्निटी लीव के विस्तार के भी सराहना करलन। प्रधानमंत्री गलसुक के अपन बजट भाषण में 15,000 रेजिलियंस मजबूती शब्द के इस्तेमाल कर लन जा। वो सरकार मॉरिशस खातिन ई कायम करे चाहता। उनकर सरकार मॉरिशस खातिन ई कायम करे चाहता। उनकर अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी खातिन ये कोशिश बढ़ावल जाता जमे जस्ती से जस्ती मजबूती के दिन है बढ़े सकब स। जलवायु के आपातकालीन स्थिति ओकर प्रभाव और तटीय इरोजन के अनुकूल कदम उठाए के हाई बरिस बजट में कोस्टल इरोजन अडाप्टेशन प्रोग्राम खातिर 4 बिलियन रुपया के प्रावधान बा। इस तरह से 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाका के पुनर्वास करल जाए जिनकी देश के 17 प्राथमिकता होला स्थल पर ही करल जाला। बाकी एक अलावा एगो नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी बा। एगो वास्तविक गेम चेंजर हो सकी। मॉरिशस में कल से रिलीजन्स ऑफ पीस इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होल बा जेकर आयोजन काउंसिल ऑफ रिलीजन के सहयोग से करल गल। 3 दिन लेक चले होला ई बैठक में दुनिया भर के धार्मिक नेता लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जलवायु परिवर्तन शांति और सामाजिक सामंजस्य जैसन समकालीन चुनौती पर ही चर्चा करत हवन सा। 4-5 दिन में से क्यूपिप के कई अन्य इलाका में जलापूर्ति में कटौती आनल जात बा। बावजूद देकर कि जल वितरण खातिर नवा समय सारिणी कैलेंडर लागू करल गल बा। ई स्थिति बरकरार बा आ निवासी लोग काफी नाखुश हवन सा एक बारे में नई समझ में आवत आओ लोग की हर हला कटौती के चलते क्यूपिप के मेयर ताशियाना लाचना भिले कबोडू बोलन अपन आवाज बुलंद करलन। वो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के एगो औपचारिक शिकायत दर्ज करलन और स्पष्टीकरण के मांग करलन। एकर संगे संगे आपातकालीन कदम उठाए के मांग भी करलन जब में आदमी लोग के जस्ती नियमित रूप से पानी मिले सकी। हुआ सेंट्रल वाटर अथॉरिटी समझाइले बा कि सूखा के चलते ऐसन स्थिति पैदा हो गल बा और कि देश के कई इलाका एकर से प्रभावित बा। सीडब्ल्यूए के संचार अधिकारी सुनील गोपाल आश्वासन देलन की हई दिशा में कोशिश करल जात बा जमे उपभोक्ता लोग खातिर नाखुशी के सीमित करे खातिर जहां लिख हो सकी नियमित रूप से जल वितरण करल जा सकी। मास्कारिंस के दक्षिण पश्चिम में पायो जाल होला एगो आंटी साइक्लोन के असर मॉरिशस पर ही पड़त आते। मौसम विज्ञान केंद्र के देने से बोला कल बा क्या वह 3 दिन खातिर स्थिति ऐसने रही। पूरा इलाका में ठंडा ठंडा करी और अस्थिर हवा भी चली। समुद्र में दक्षिण पश्चिम इलाका में समुद्र खराब हो जाए 3 मीटर ऊंचा लहर उठी। कुछ इलाका में समुद्र में जाए के भी काफी कठिन हुई। और मौसम की ही बात करी लसा लेकिन दूसर दिश के समाचार में ई प्रमुख बा। यूरोप में जानलेवा गर्मी के लहर के प्रभाव आते हुआ पर ही रेड अलर्ट घोषित करल कर बा। ढेर जना नदी झील तट के दिने राहत पाए खातिर जात हवन सा निकलत हवन सा। गल गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी के लहर के चलते डूबे के कारण 40 जना के मरनी हो गल बा। हुआ प्रधानमंत्री सेबास्टियन लिको ने बोलन की कईन प्रमुख शहर में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बा और कि कईन यूरोपीय देश में गर्मी के लहर चरम तक पहुंच गल बा। स्पोर्ट्स आर युवा मंत्री मारिना फिरारी बोलन कि तैरे जाए बखत चाहे अनसुपरवाइज्ड इलाका में नहीं जाए के और सावधानी बरते कि तापमान 43 डिग्री पार कर गल बा। अब लेक फ्रांस स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाका रहल बा। फ्रांस में जून के महीना सबसे गर्म महीना रहल बा। जर्मनी के राष्ट्रीय रेलवे कंपनी दायचे बान मंगर के सांझ के संचार प्रणाली में आर खराबी के कारण पूरा देश में सब ट्रेन के रोक देवल गलबा भारत में नवा दिल्ली में नई दिल्ली में 19वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के दो दिवसीय कार्यक्रम के बाद कल ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संगे बैठक लगाइलन। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बोलन कि सब सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर बहुत ही खुशी होल बा। और स्पोर्ट्स से संबंधित ये खबर, फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेला गल मैच के नतीजा इस प्रकार बा। क्रोएशिया पनामा के 1-0 से हरा देलक, पुर्तगाल उज्बेकिस्तान के पराजित करलक 5-0 से, जबकि इंग्लैंड गाना के बीच जो मैच खेला गल वो ड्रॉ रहल। और ये भी बताया दे जा कि वर्ल्ड कप जगत में पहला हला क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास रच दिलन। और पुर्तगाल के नंबर एक फुटबॉल खिलाड़ी भी गोल स्कोर बन गलन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 बरिस के उम्र में इतिहास रच दिलन। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करे हुआ दुनिया के पहला खिलाड़ी बन गलन। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दाके वो यूसेबियो के रिकॉर्ड तोड़न और अपन करियर के 975 गोल पूरा कर दिले हवन। और ये भी बता दे जा कि कोलंबिया और कोंगो के बीच आज फजीरे 6 बजे से मैच खेला जात रहल। और एकर में नतीजा इस प्रकार से बोलल जात बा, कोलंबिया कोंगो से के 1-0 से हरा दिले बा। भोजपुरी के समाचार ही है पर ही पूरा भर ध्यान दे ला जा, बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ। सुबह के 8:13 हुए हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया, वही होगा जो रोज होता है। आप गाड़ी में बैठे होंगे, गाने सुन रहे हैं और आपको फिक्र नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वही पल आपके साथ है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने मोमेंट में जीना जरूरी है ना। अगर वहां से अपने ध्यान को कहीं और ले जाओगे तो वो गलत हो जाता है। आप पहले से ही जब सोच लेते हो कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव का क्या होता है ना कि जो गलत चीजें होती है ना वो सच में जल्दी से हो जाती है, अच्छी चीजें टाइम लगता है ना। चलो इसीलिए पेशेंस रखो, साथ रहो और ऐसे ही झूमते जाओ। मौसम, आज का मौसम थोड़ा बेईमान लगा मॉर्निंग में। अभी तो हम स्टूडियो के अंदर हैं, बाहर क्या चल रहा है ये जानने के लिए चलिए मिलते हैं रजनी से।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ऑन इट टू स्विनर्स।
4: मस्करीन्स के दक्षिण में एक काफ़ी जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होती रहेगी, अन्यत्र भी आंशिक रूप से वर्षा होती रहेगी। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। 7:45 सूर्योदय।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
5: Béala, Wednesday Bazaar, logue et cote winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans tout ban winners.
6: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes aubergine long pour 22,95 €. 500 grammes giromo pour 10,95 €. 500 grammes papaye pour 9,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frit pour 104,95 €.
5: Ban Trila, Bazaar Maudirou. Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous winners.

0: एंड दिस वन गोज स्पेशली फॉर करुणा. कहती है ट्रैफिक में फंसे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूजिक है ना. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट करुणा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय.
1: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: दोस्तों कभी कभी हमारे साथ गलती हो जाती है, हमसे गलतियां होती हैं, हम सॉरी बोल देते हैं, चलो सामने वाले ने माफ़ कर दिया. लेकिन कभी कभी लोग गलती नहीं गलत करते हैं और वो जानबूझ के करते हैं. कहते हैं कि भले वक्त लगेगा पर कर्म अपना खेल ज़रूर खेलेगा, इसलिए बदला लेने में अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो. उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे ये करना, मुझे वो करना, ऐसा नहीं चलता. जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा. तुम बस अपनी नीयत साफ रखो, मेहनत करते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो. कहने की वाली बहुत आसान चीज है कि हर चीज का हिसाब तुरंत नहीं होता है. जब आप एक बीज लगाते हो तो उसको टाइम लगता है पौधा बनने में, फिर वो फल देता है. कभी कभी इंसाफ देर से मिलता है लेकिन कर्मों का असर कभी बेकार नहीं जाता. जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है. इसलिए अपना ध्यान बदले पर नहीं, अपनी ग्रोथ और अपनी सुकून पर रखो, ठीक है. कर्मा की अदालत में कोई गवाह नहीं होता, वहां हर इंसान के कर्म ही उसकी गवाही देते हैं.
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: And yes, time ho gaya hai. Chaliye dekhte hain.
1: It's the World Cup magazine on RMQ with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होगी 48 टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको

0: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन।
2: ऑलराइट, तो अरविंद रेडी है, अरविंद चलें।
3: लेट्स गो फॉर वर्ल्ड कप स्पेशल। वैसे कोलंबिया की टीम को कैफेटेरोस कहते हैं। आज सुबह कॉफी पीकर चाय के साथ भी कोलंबिया की टीम नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। आज सुबह मुनोज के गोल पर कोलंबिया ने कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को 1-0 से हराया। इस प्रकार कोलंबिया की टीम अपने ग्रुप में 6 अंकों के साथ आगे है। पोर्टुगल दूसरे पोजीशन पे, उसके पास है 4 अंक। सो कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल वाला मैच ग्रुप टॉप करने के लिए डिसाइसिव होगा। रोनाल्डो इज बैक। पोर्टुगल में रोनाल्डो के लिए कह सकते हैं फॉर्म तो टेम्पोरेरी है पर क्लास परमानेंट है। अपने दूसरे मैच में ही रोनाल्डो का जादू चल पड़ा। 6 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बना CR7। जब रोनाल्डो चमकता है तो पोर्टुगल पछाड़ता है। 5-0 से सिलेसाओ ने उज्बेकिस्तान को हराया। इसमें रोनाल्डो का डबल, नूनो मेंडेस का एक गोल, नेमाटो का एक ऑन गोल, फिर राफेल लियाओ का एक गोल। गाना ने इंग्लैंड को रोका। पहले मैच में 4-2 की जीत के बाद द थ्री लायंस कुछ ज्यादा गा रहे थे, दहाड़ रहे थे, लेकिन गाना ने उनका गाना बंद किया। उसके सामने गाना की टीम इंग्लैंड को गोल स्कोर करने से रोक पाई। ब्रूटल रियलिटी चेक, ऐसा तोमा टुगल ने कहा, लेकिन नो पैनिक। सो ग्रुप एल में इंग्लैंड आगे है 4 अंकों के साथ। गाना के पास भी 4 अंक है। क्वालिफिकेशन के लिए काफी है पर किस नंबर पर ये जानना बाकी है, क्योंकि क्रोएशिया ने भी अपनी पहली जीत दर्ज की। एम्ब्लेमैटिक कप्तान लुका मॉड्रिच के लिए ऐतिहासिक दिन था। क्रोएशिया के साथ उसका 200वां मैच, डबल सेंचुरी पूरी की। 1-0 से क्रोएशिया ने पनामा को हराया। इस प्रकार पनामा ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा, जबकि क्रोएशिया के चांसेस अभी तक हैं। इस ग्रुप में इंग्लैंड का आखिरी मैच पनामा के खिलाफ है और क्रोएशिया वर्सेस गाना दोनों मैच इस सैटरडे को एक ही समय रात्रि के 1 बजे। आज ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच खेले जाएंगे, दोनों मैच एक ही समय रात के 11 बजे, एक ही समय, ताकि कोई हेर फेर न हो। बोस्निया वर्सेस कतार, स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा। कनाडा और स्विट्जरलैंड ग्रुप के टॉप पोजीशन के लिए खेलेंगे। दोनों के पास 4-4 अंक हैं, जो जीतेगा टॉप पोजीशन ले जाएगा। बोस्निया और कतार दोनों के पास 1-1 अंक है, जो जीतेगा बेस्ट थर्ड से क्वालिफाई हो सकता है और जो हारेगा घर जाएगा। ग्रुप सी के मैच भी आज खेले जाएंगे। यहां पर ग्रुप का टॉप पोजीशन दाव पे है। ब्राजील और मोरक्को के पास 4-4 अंक हैं, स्कॉटलैंड के पास 3 अंक, आईची 0। आईची के खिलाफ मोरक्को की टीम को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, पर ब्राजील को स्कॉटलैंड से बच के रहना होगा। फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में यह मैच हार्ड होगा, तगड़ा मुकाबला। स्कॉटलैंड के लिए एक ड्रॉ काफी है बेस्ट थर्ड से क्वालिफाई होने के लिए। जीत हुई तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन। स्कॉटलैंड में एंडी रॉबिन्सन, फर्ग्यूसन, मैक्टोमिने, मैकगेन, एडम्स जैसे अनुभवी तजुर्बे वाले स्टार खिलाड़ी हैं, पर ब्राजील के लाइनअप में अलिसन, डानिलो, मार्किनोस, गैब्रियल, डुग्लास सांतोस, ब्रूनो गुमारेस, कैसेमिरो, लुकास पाकेटा, रायान, मैथ्यूस कुन्हा और विनिसियस जूनियर होंगे। राफिना इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएगा, नेमा बेंच पर होगा। फिर कल सुबह 5 बजे ग्रुप ए के 2 मैच, चेक रिपब्लिक वर्सेस मेक्सिको, साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया। मेक्सिको पहले से ही क्वालिफाई है ग्रुप टॉप करके, दूसरे पोजीशन पर है साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ। मतलब साउथ कोरिया को कम से कम 1 अंक चाहिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। अगर चेक रिपब्लिक की जीत हुई और दक्षिण कोरिया की हार, चेक रिपब्लिक दूसरा स्थान ले सकेगा। साउथ कोरिया को बेस्ट थर्ड प्लेस का इंतजार करना होगा, पर खेले गए फुटबॉल के मद्देनजर साउथ कोरिया फेवरेट है सेकंड पोजीशन के लिए। सो ये सभी मैच खेले जाएंगे। ग्रुप स्टेज के फाइनल गेम्स में काफी ट्विस्ट और टर्न हो सकते हैं। देखा जाए तो 32 टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी, 32 टीम्स, केवल 16 घर वापस। मतलब मोर डिफिकल्ट टू बी एलिमिनेटेड दैन टू क्वालिफाई। 2 प्रमुख बदलाव आए हैं, यानी चेंजेस निर्णायक होंगे। एक तो पहली बार वर्ल्ड कप में गोल डिफरेंस के स्थान पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। ये अगर 2 टीम में बराबर अंक पे हो। इसके अलावा इस बार 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स क्वालिफाई होंगी। कुछ टीमों के लिए फॉर्मूला अनफेयर है, न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि जो

सिटी में इस वीकेंड में खेलेंगी, उनको पता चल जाएगा कि उन्हें क्या रिजल्ट चाहिए, किस टीम से बचें, किस टीम के साथ खेलें। और अंत में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने आएगा और ट्रॉफी सेरेमनी में भी भाग लेगा। फीफा प्रेसिडेंट यानी इन्फांतिनो ने कंफर्म किया। कुछ लोग सोचने लगे हैं कहीं यूएसए की टीम

0: Good Beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: करेक्टर ढीला है भाई, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, पर आपको पता ही है इबोला से ज्यादा खतरनाक होते हैं ये वायरसेस। इसने बोला, उसने बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, कहां बोला, कब बोला, तू बोला, वो बोला, ये बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, ये सारी इतनी बीमारियां हैं कि इंसान को पागल कर दी। इसीलिए जो करना है करो, लेकिन याद रखना जो करो किसी के दिल को मत दुखाना और किसी को चोट मत देना और किसी के साथ बुरा मत करना, वरना बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, आप विदिता का साथ दे रही है, प्रोग्राम चल रहा है आप

के लिए मॉर्निंग बीट। मॉर्निंग बीट में जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनके लिए पेश है एक जादू की झप्पी। इफ यू नॉट फीलिंग ओके, ट्रस्ट मी यू गोना बी ओके। आज का दिन बहुत ही फंटास्टिक रहने वाला है आपके लिए, ट्रस्ट मी।

0: to Radio Mesti
1: Traffic Update.
0: And yes, my dear friends, thank you so much for tuning into Radio Masti. और यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और उन्होंने बताया कि नो एक्सीडेंट, नो इंसिडेंट की रिपोर्ट है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा क्या है ना कि ट्रैफिक जो थोड़ा सा थम गया, यानी कि गाड़ियाँ थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। और हम बात करते हैं अगर इधर कैटोबोन की, तो इधर भी गाड़ियाँ चल रही हैं यानपला की ओर, इट्स मूविंग। कोटा नो से साउथ की ओर देखें तो इधर भी गाड़ियाँ जो हैं जो सिटी सेंटर के अंदर पहुंचना चाहते हैं वो थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं। त्यागोश की ओर भी इट्स मूविंग। इवन जो मोटरवे है वो चल रहा है अच्छे से। एंड गजबी की ओर देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गाड़ियाँ जो हैं वो रुक रुक के चल रही हैं। और साथ में हम देखते हैं इधर बहुत सारे लोग हैं जो निकल कर आ रहे हैं लाइक सैजों फिनिक्स की तरफ से, तो यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं बारिश की वजह से थोड़ी रुक रुक के चल रही हैं, अदरवाइज इट्स मूविंग। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है please let us know on 5499-1294.
2: Morning Beat, a good beat for your morning show. James.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: So, my dear friends, that's it. हमारे जाने का समय हो गया है. Thank you, Elish, आपके मैसेज के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे. और यहाँ पर भी एक मैसेज आया, कहते हैं आज मेरे दोस्त सूरज बेदी सुकर का बर्थडे है. वैसे हमने उनको कॉल किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. कुंगो मार रहे थे उनको, हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से, बहुत बहुत सारा प्यार है. थैंक यू अगेन करुणा, आप हमारे साथ जुड़े रही और अभी भी हमारे साथ हैं. होप कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए होंगे और बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं हमें सुन रही हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज. एंड चलिए इसी के साथ अब मेरे जाने का टाइम हो गया है. मेरे बाद ज़रूर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग मस्ती ऑन रेडियो मस्ती. याद रखिए कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट मोमेंट ज़रूर होते हैं. तो उनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें अपने आज के दिन के लिए स्पेशल ज़रूर बताएगा. तो विकास होंगे आपके साथ थोड़ी देर में. मैं चली पतली गली निकल कर, इससे पहले कि वो कहे आउट मैं चलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे.
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Oh, good morning, time check. It's 9 a.m. Wednesday, 24th of June. थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार, साथ जुड़े रहिए. It's all happening right here. चलिए चलते हैं संक्षिप्त समाचार की तरफ.

0: 24 जून बुधवार का दिन और इसी के साथ रजनी बीकन जी हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं समाचारों को लेकर। नमस्ते रजनी जी।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। राज्यसभा में आज भी बजट बहस जारी। दिन के 11:30 बजे कार्य जारी रखे जाएंगे। कल बजट पर बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। विपक्षी सांसद जोना बेरांजे ने एक सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि वर्तमान में कुछ समृद्धि का इस्तेमाल कल के बदलावों के लिए किया जा सके। पर्यटन मंत्री ऋषा जीवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास का उल्लेख किया और आगे बताया कि देश नई मंडियां तलाश रहा है, जैसे कि पूर्वी यूरोप, रूस और गल्फ। उधर लिबा पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से वित्तीय कंसोलिडेशन किया जा रहा है। उन्होंने कृषि उद्योग को गतिशील बनाए जाने के लिए निर्धारित कदमों और मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के विस्तार की भी सराहना की। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर खैर स्टॉम द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा, जो कि देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर संबंधित है।

इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। यूरोप में जानलेवा गर्मी का लहर का प्रभाव जारी है। वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिए गए हैं। बहुत से लोग नदियों, झीलों और तटों की ओर राहत पाने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी की लहर के चलते डूबने का के कारण 40 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि अब तक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाके हैं। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार हैं। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, जबकि इंग्लैंड घाना के बीच जो मैच खेला गया वो ड्रॉ रहा 0-0। और आज सुबह 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला गया और इसमें कोलंबिया ने कोंगो को 1-0 से हरा दिया। जबकि ये भी कह दें कि वर्ल्ड कप जगत पे पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, वे बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।

0: कुछ अलग सी है, बादलों की हल्की सी चादर और ठंडी हवाओं का नरम सा एहसास और मौसम में एक सुकून भरी खामोशी। ऐसे खूबसूरत मौसम में चाय की गर्माहट और बॉलीवुड के सुरों के साथ हो तो फिर ये कमाल की कॉम्बिनेशन ही हो। तो चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में आप काम शुरू कर चुके हो या अपने काम में बिजी हो, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए और गानों के लिए यानी कि बॉलीवुड में आ जाने के लिए। हे गुड मॉर्निंग, जब आपके साथ और 12 बजे साथ रहने वालों कुछ पॉजिटिव वाइब्स और साथ साथ मुस्कुराते हुए कुछ गाने जो चाहेंगे आपको लेकर जाने के लिए एक ऐसी दुनिया में जहां पर खूबसूरती है, पॉजिटिविटी है एंड चहल पहल। चलिए चलाते गाने की मन भी जाए बहल।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

और वही पर अनुषा जो है प्लेन द होस्ट से कहते हैं अगला गाना टू पापा ससन है साथ में मम्मी प्रेमिला ब्रदर संजू सुन लो रोशनी नी से परी नेफ्यूज एम केश और बाकी सब थोड़ी देर में आपकी राशियां

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसा अब हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं राशियों के साथ वो है
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन आपको ये सिखाने आया है कि जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन साथ साथ में ये भी जरूरी है कि मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ते रहें। जिम्मेदारियां तो होंगी और बोझ के चलते कुछ आप थोड़ी सी व्यस्तता यानी बिजी हो सकते हैं और आप याद रखिए कि अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: खुशियां धीरे धीरे आपके आंगन में प्रवेश करती नजर आ रही हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार या नए सदस्य के आगमन की संभावना वातावरण को उत्साह से भर सकती है। समाज में आपके कार्यों की सराहना होगी और सम्मान बढ़ेगा। अतीत की कोई गलती आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सीख देकर आगे निकल जाएगी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: चारों ओर पॉजिटिविटी है और इसका वातावरण बना रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में बदलाव चाहने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। खोई हुई कोई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है। कामकाज में काफी बिजी रहने वाले लेकिन परिवार के साथ बिताए गए कुछ पल आपको मानसिक सुकून जरूर देंगे।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आपके प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि के संकेत हैं। लोग आपके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। निवेश के लिए सरकारी योजनाएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन किसी नए पार्टनरशिप में कदम रखने से पहले अच्छी तरह से विचार जरूर कर लें।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे जीवन का संतुलन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मित्रों के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी प्राप्त होगा। ओहो, हमें ना भूलना। वैसे किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में अटका हुआ विषय सुलझ सकता है। परिवार के साथ किसी शुभ आयोजन में शामिल होकर मन प्रसन्न रहेगा।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज भाग्य आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी समाप्त हो सकती है और बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किए गए वादे को निभाने का प्रयास करें। उन्नति के मार्ग में जो रुकावटें थी वो धीरे धीरे हटने लगेंगी।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत आ रहे हैं। आय के नए स्रोत खुलते नजर आ रहे हैं और भविष्य के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टूडेंट है तो कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नए लोगों से मुलाकात आगे चलकर काफी लाभदायक साबित हो सकती है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है और कोई चिंता अगर लंबे समय से मन को परेशान कर रही थी तो उसका समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। परिवार के साथ मनोरंजन या किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी के पल बिताएंगे।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: आज आर्थिक मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सुविधाओं में वृद्धि होगी लेकिन जोखिम भरे जो निर्णय हैं उनसे बचना आपके लिए समझदारी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज परिवार और करियर दोनों क्षेत्रों में संतुलन देखने को मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। लंबे समय से मन में संजोई हुई कोई इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय है, बशर्ते पूरी एकाग्रता बनाए रखें।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: भाई, खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। दिखावे से दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। संतान के भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने के योग मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नई चर्चा या विवाद उभर सकता है।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज का दिन शुभ समाचार और पॉजिटिव अवसरों से भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। किसी कानूनी मामले में सफलता मिलने के संकेत है। नए काम में अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो उत्साह बढ़ेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको गहरा सुकून देगा।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: सीख ले।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: चल चलते हैं लाइफस्टाइल मंत्रा की तरफ फॉर द डे वेंसडे की मॉर्निंग। और आपकी परिस्थितियां हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो सिचुएशन होती है वो कभी कभी हाथ से आगे निकल जाती है, नहीं लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया, जैसे आप रिएक्ट करते हैं, वो तो कंट्रोल में होती होती है। जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी डेडलाइंस का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, और कभी बस वो दिन जब कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं चलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारा इमोशनल स्टेट अक्सर सिचुएशन से ज़्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम थोड़ा शांत और पॉजिटिव रहते हैं तो दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर सॉल्यूशन मोड में काम करने लगता है। इसलिए खुश रहना या होपफुल रहना, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं होता, ये उनका सामना करने के लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना होता है। तो इस वेंसडे की मॉर्निंग पर अपने आप से एक वादा कीजिए और हर चैलेंज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक चैप्टर की तरह देखेंगे, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। और याद रखिए, जब नजरिया बदलता है तो मंजिल नहीं सफर भी खूबसूरत लगने लगता है। मॉर्निंग मंत्रा, इट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चल चलते हैं एक बार फिर से किचन की तरफ, और वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ बनती हैं, बहुत सारी कह सकते हैं कि रचनाएं रची जाती हैं म्यूजिक के साथ साथ। वहाँ पर जो लगता है प्यार का तड़का, वो कैसे भुला ये लड़का। इसलिए सभी लेडीज जो अभी किचन में काम कर रही हैं, उनके लिए भी चलिए कुछ किचन टिप्स, स्मार्ट टिप्स। और कभी होता है कि आपने सोचा कि और कुछ नहीं तो चलिए अंडे की करी बनाते हैं, हाँ, लेकिन अंडा फ्रेश है कि नहीं ये जानना ज़रूरी है। तो एक बोल के अंदर पानी भरिए और अंडा डालिए, अगर नीचे बैठ जाए तो फ्रेश, अगर तैरने लगे तो यूज़ करने से पहले चेक ज़रूर कीजिए। वैसे तो आजकल एक्सपायरी डेट आती है ना। और चलिए अब चलते हैं अंडे के बाद सीधा टमाटर की तरफ। भाई टमाटर का पेस्ट जल्दी बनाना है तो टमाटर को ग्रेट कीजिए और छिलका हाथ में रहने दीजिए, मिक्सर निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी और पेस्ट फटाफट। और वहीं पर अगर आप आलू उबाल रहे हैं तो उतने कि आपने बस सीधा डाल दिया उसको माइक्रोवेव में और लगा दिया कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आप काटेंगे उसको छोटे पीसेस के अंदर तो होगा जल्दी काम। और फिर जब होता है जल्दी काम तो शरीर को मिलता है थोड़ा आराम।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

सीधा अब 10 मिनट की समाचार की ओर, इसके बाद फिर से मुलाकात होगी एंड इट्स गोना कंटिन्यू टिल 12 पीएम, जहां पर कुछ मैसेजेस, कुछ और बॉलीवुड की बातें, लाइफस्टाइल और किचन हैक्स। लेकिन जिंदगी में तभी खूबसूरती आती है जब ये बॉलीवुड के गाने शामिल हो जाते हैं। नो मैटर वेयर यू आर, म्यूजिक इज नॉट दैट फार, हमेशा की तरह फ्रीक्वेंसी सेट करो और दिल का मिजाज भी।

0: program to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 24th of June, Wednesday, then time check. It's exactly 10 a.m.
6: स्टूडियो में आगे रजनी उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
7: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. राज्यसभा में आज भी बजट बहस जारी. दिन के 11:30 बजे कार्य जारी रखे जा रहे हैं. कल बजट पर बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए. विपक्षी सांसद जोआना बेरांजे ने एक सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि पर्यटन मंत्री ऋषभ जिवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की. उन्होंने मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास का उल्लेख किया. उधर लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से वित्तीय कंसोलिडेशन मजबूती की प्रक्रिया चलाई जा रही है. उन्होंने कृषि उद्योग को गतिशील बनाए जाने के लिए निर्धारित कदमों, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के विस्तार की भी सराहना की. इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान है. इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिक वाले स्थलों पर पाए जाते हैं. लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा जो एक गेम चेंजर हो सकता है. मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी. पूरे इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चल रही हैं. समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाके में समुद्र खराब ही रहेगा. 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. कुछ इलाकों में समुद्र में भी जाना काफी मुश्किल होगा. विदेशी समाचारों की ओर एक बार फिर से मौसम की ही बात करते हैं, लेकिन गर्मी की यूरोप में जानलेवा गर्मी की लहर का प्रभाव है, जहां पर रेड अलर्ट घोषित है. बहुत से लोग नदियों, झीलों और तटों की ओर राहत पाने के लिए निकल पड़े हैं. पिछले गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी की लहर के चलते डूबने के कारण 40 लोगों की मौत हुई है. वहां के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लिकोनी ने कहा कि कई प्रमुख शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है. बता दें कि अब तक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाके हैं और फ्रांस में ही इन पिछले दिनों 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया ये तापमान. रुख करते हैं भारत. भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन में रोहित शर्मा को सम्मानित किया. राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह द्वितीय में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया. गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय कलाकार माधवन को भी राष्ट्र

0: द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। विभिन्न भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए। और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए, बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है। आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ, मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ। ये भी बता दें कि फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, इंग्लैंड घाना का मैच ड्रो रहा 0-0 और आज सुबह 6 बजे कोलंबिया का मुकाबला हुआ था कोंगो के साथ, कोलंबिया ने कोंगो को 1-0 से हराया। और ये भी बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रामारोज शामुनी में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे सुनील प्रवीण दुली के घर रामारोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अवेन्यू फ्लॉम्बॉयंट इजिडोर रोज में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद देव जो आता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके भाई श्री हरिदेव सोआता के घर अवेन्यू फ्लॉम्बॉयंट इजिडोर रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। श्रीमय मात्या क्लेमेंसिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश रामकलावन जो दानेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री संदेश रामकलावन के घर श्रीमय मात्या क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड बनाके में 108 साल की 101 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमत्या भिनिक पैदाशी नाम सिपुल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी और श्रीमानु भिनिक की मां थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोथवायल बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: सेफली लैंडिंग इनटू द सेकंड आवर 10:12 और ऐसा लग रहा है जैसे ये ठंडी हवाएं कान में आकर फुसफुस आके कुछ कह रही हैं। जहां पर यादें तरोताजा हो रही हैं वहीं पर बाकी का दिन भी आराम से चल रहा है क्योंकि म्यूजिक ऑन योर साइड हमेशा की तरह 24/7 7/7।

हे, कहाँ चली? अरे मजाक अली, मूड और मौसम दोनों आपके साथ में ऑसम। कंटिन्यू स्टिल 12।

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5

0: to Radio Musti. Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: जैसे आप जहाँ पे ठंड हो रही है वहीं पर डेनिम जैकेट्स हो या लेदर जैकेट्स हो, स्कार्फ्स हो, ओवरकोट्स हो, सब कुछ बाहर आ रहा है. लेकिन फैशन इंस्पिरेशन आज लेते हैं फ्रॉम द मूवी बैंड बाजा भारत. काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी और श्रुति और बिट्टू की जो लुक थी ना वो कभी फैशन से अलग हुई नहीं. बस ये था कि कॉन्फिडेंस और साथ में कम्फर्ट भी. हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं लेकिन जो पहने उसमें अपनी पर्सनालिटी जरूर दिखनी चाहिए. सो आज का टिप, अपने आउटफिट में एक स्टेटमेंट पीस ऐड कीजिए, चाहे वो एक कलरफुल स्कार्फ हो, एक क्लासी वॉच हो या स्टाइलिश पेयर ऑफ शूज. कभी कभी एक छोटी सी डिटेल ना पूरी लुक को चेंज कर देती है. यानी कि जिस तरह का कलर आप पहन रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आप कुछ कलरफुल जरूर पहन सकते हैं. क्योंकि फैशन कसली चाम महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि उस कॉन्फिडेंस में है जो आप उस कलर के साथ लेकर निकलते हैं. बैंड बाजा बारात, साथ में फैशन हो अरे उसका साथ तो क्या बात.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2
1: रेडियो मस्ती.

भाई साहब ये मौसम एकदम से चेंज होता होगा कभी गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, क्योंकि जब धूप निकल जाती है तो फिर लगता है कि सब ठीक तो है, उसके बाद टी शर्ट पहना और निकल पड़े। हाँ लेकिन यही टाइम होता है जब ठंडी हवा लगती है और उसके बाद अचुम जितनी शांति वो हो जाती है गुम। 10:31 एंड यू ट्यून इनटू आरएम 2। थोड़ी सी चेंज हुई, राइट, म्यूजिक थोड़ा सा चेंज हुआ, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, एंड दिस व्हाट म्यूजिक डज एवरी सिंगल टाइम, चाहे क्लाउडी हो या सनशाइन।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Right, बॉलीवुड में खबरें बनती जाती हैं और कहानी यूं ही चलती जाती क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है और इतने सारे स्टार्स हैं जो इतने सारे काम कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, उन्होंने कहा कि आजकल मीम्स से मीम्स बनते जा रहे हैं और ऐसे में अपनी कॉमेडी को मेंटेन रखना इज नॉट ईजी एट ऑल. अरे खिलाड़ी कुमार को थोड़ा खेलना तो पड़ेगा ही ना. वहीं पर आ गए हैं कॉकटेल जूस से शाहिद कपूर. उन्होंने कहा कि देखो आसान नहीं है टू गेट पीपल टू द बॉक्स ऑफिस, लेकिन रश्मिका मंदाना के लिए बहुत सारी उन्होंने तारीफ पे तारीफ की है. उन्होंने कहा शी इज गॉट अ ग्रेट हार्ट और एक रीसेंट इंटरेक्शन में उन्होंने ऐसा कहा. रश्मिका मंदाना कीर्ति सानन के साथ आ गए हैं इस मूवी के अंदर कॉकटेल 2, जहां पर कुछ पुराने गानों को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है एंड रिलीज ऑन द 19th of June. काफी कमाल की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग रही. हाँ मिक्स रिव्यू जरूर है लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच में हमेशा एक डिशुम डिशुम चलती रहती है ना. क्रिटिक्स कहते हैं इसमें ये नहीं वो नहीं, लेकिन फाइनली जो पब्लिक है वो ही डिसाइड करती है. 95 करोड़ वर्ल्ड वाइड पास करने के बाद डे 5 पर निकल पड़ी है मूवी सीक्वल टू सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण एंड जयाना पेंटी. हमें पता है कि मूवी काफी कमाल की थी, कॉकटेल ऑफ इमोशंस, तभी इसका नाम है कॉकटेल 2. इसमें तो दो तीन नजर है, खाली 2 पे क्यों अटकी है. बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं और हाई प्रोफाइल कास्टिंग है, बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती जा रही है. देखते हैं कितना फन कितनी मस्ती. अगर आपने नहीं देखी तो डू लेट अस नो कि कहानी आपके साइड पर कैसी रही. इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: इस काफी कैची। और अगर बात करें इस मूवी की तो इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। दिल कभी कुछ कहता है और दिमाग कभी कुछ कहता है, और इतने टाइम से जो आपके इमोशंस हैं ना, जो सरफेस के नीचे दबे होते हैं, वो फाइनली बाहर निकल कर आते हैं। अब अगर लड़की हो अंजलि और लड़का हो राहुल, तो फिर कुछ होना तो बनता है ना।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
0: ये क्या होता रहता है देवी जी आपको? देखिए ऐसा है कि जब ना समझ में आए तो इसी को कहते हैं प्यार, क्योंकि अगर कैलकुलेशन की तो वो होता है मैथमेटिकल, लेकिन अगर ऐसी हो जाए तो फिर होता है मैजिकल।

इस वर्ल्ड कप के मैचेस बहुत ही कमाल कर रहे हैं और जहां पर सिया सेवन पुर्तगाल में एक बार फिर से कमाल करके निकल गए आगे रोनाल्डो वहीं पर यहां पर मैसेज शालनी ऑलवेज हुए द RM2 क्या कमाल का म्यूजिक क्या ऑसम म्यूजिक और साथ में मूड सेट होता है ज्योति शाह तो बनारस से अभी हेलो टू रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली के लिए भी चलिए इट्स ऑल अबाउट लव ये जो प्यार है इमोशंस है ये जो दिलों को जोड़ने का एक अलग ही तरीका है ये है म्यूजिकल वे मन के तार किसी को देख के बजते हैं बार बार पैदा होती है झनकार और पकड़ लेती है हार्ट बीट थोड़ी सी रफ्तार क्या यही है प्यार

0: वेंसडे की मॉर्निंग 24th ऑफ जून टाइम चेक एग्जैक्टली 11 AM आप सुन रहे हैं RM2 रशिया के स्टूडियो में से मिलते जाते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार नमस्कार
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं सबसे पहले स्थानीय खबरें आज दिन के 11:30 बजे राज्यसभा की कार्य जारी रखे जा रहे हैं कल बजट पर बहसों के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को अपने बजट भाषण में 15 बार रेजिलियंस मजबूती शब्द का इस्तेमाल किया उनकी सरकार मॉरिशस के लिए यही कायम करना चाहती है और उनके अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के लिए यही कोशिश बढ़ाई जा रही है इस साल बजट में कोस्टल इरोशन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान है इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिक वाले स्थलों पर हैं उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी है जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को सागर द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाए जाने की बात कही गई है बरतानी प्रधानमंत्री सखेर स्टॉमर द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है मास्कारिंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी पूरा इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चलेंगी समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में समुद्र खराब ही रहेगा 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और कुछ इलाकों में समुद्र में जाना भी मुश्किल होगा मौसम की ही बात करते हैं लेकिन इस बार भारत में जी हाँ मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश से सड़कें रेलवे ट्रक ट्रेक और सबसे जलमग्न हो गई है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई लोकल की ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रक खराब होने की घटना के कारण अब तक 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और मौसम की ही बात करते हैं लेकिन रुख करते हैं इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में आज से अगले गुरुवार तक के लिए अति गर्मी के चलते रेड अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है पहले से ही एम्बर अलर्ट जारी है रेड अलर्ट गंभीर रूप से गर्मी की चेतावनी है यानी जान का खतरा भी हो सकता है दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान करीब 37 से 39 सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान इंग्लैंड और वेल्स में कई स्कूल आंशिक रूप से या पूरी तरह से बंद हो गए हैं और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ मौसम संबंधी संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद कुछ ही समय में शोक समाचार रामारोज शामुनी में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे सुनील प्रवीण दुली के घर रामारोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौकोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 8:00 PM Avenue Flamboyant Isidore Rosemée 67

0: साल के 63 इयर्स ओल्ड के श्री आनंददेव जोवाता, श्री आनंददेव जोवाता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके भाई श्री हरिदेव सोवाता के घर अवेन्यू फ्लोंबायों इसी दो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शुमे मात्या क्लेमेंसिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश राम कलावन जो दानिश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री संदेश राम कलावन के घर शुमे मात्या क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रोथ रॉयल बन अकेय में 101 वर्ष की आयु में श्रीमती धनमत्या भिनिक पैदाची नाम सिपुल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी और श्रीमानु भिनिक की माँ थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोथ्वायाल बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज सुबह से हवा थोड़ी सी ज्यादा चल रही है नहीं, और इसी हवा के अंदर अगर आपके बाल उड़ते उड़ते यही कह रहे हैं कि चल मुझे वहां ले चल जहां पर इतनी ना हवा हो और मन ना जाए मचल, तो म्यूजिक का असर है। किसी और को बता ले, जहाँ पर लड़की कहते हैं किसी और को पटा ले, मैं तो कहता हूँ खुद तो सुनो लेकिन किसी और को भी सुना ले।
1: You're listening to RM2 Radio Masti.
0: Oh yes, the third hour Mast Morning Show. 11:10 and welcome back. रात भर के matches, my God.

म्यूजिक ऐसे वक्त के साथ बदलता चला गया ना, कई लोग हैं जिनको 90s के कॉम्पोजिशंस बहुत ही ज्यादा पसंद थी, वहीं पर हमारे जो 90s के सिंगर्स हैं उन्होंने भी कुछ प्राइवेट एल्बम्स करके कुछ अलग ही किया। प्रीति यूज लिसनिंग एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स और कहती हैं कि ये भी गाना काफी स्पेशल है। अलग साल का टच, एक अलग सा इफेक्ट।

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। हम सब पैसे के बजट को बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने एनर्जी के बजट को बनाया है? वैसे सोचने में अजीब सा लगता है, नहीं? वैसे रिसर्च कहती है कि सक्सेसफुल और जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं सिर्फ अपना टाइम नहीं बल्कि अपनी एनर्जी भी मैनेज कर लेते हैं। सोचिए, एक दिन में आप हर काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन कभी बैटरी लो, कभी चेहरे पर ग्लो और कभी ओ नो, ये होता ही होता है ना। हर दिन एक जैसा तो होता नहीं, इसलिए कुछ सिचुएशंस आपको थका सकती हैं। इसलिए अगर हर दिन आपने अपने आप से पूछ लिया कि आज मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च होने वाली है, तो फिर आपको बताया कि आज आफ्टरनून में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि हमारा दिमाग दिन भर बहुत सारी डिसीजंस में अपना समय बिताता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जैसे कपड़े रात को ही निकाल कर रखना, नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लेना या मील प्लान कर लेना मेंटल एनर्जी को बचाती है। यानी कि आपने पहले से ही अपना सारा काम कर लिया और सेट हो गए। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग रूटीन को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज का चैलेंज ये है कि एक कागज पर दो कॉलम्स बनाइए। यहाँ ध्यान सुनिए, दो कॉलम्स, एक है एनर्जी गिवर्स और है एनर्जी ड्रेनर्स। जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समाप्त होती, ड्रेन हो जाती है। दिन के एंड में तीन तीन चीज़ें लिखिए। एक हफ्ते बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी खुशी और प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से जुड़ी है। कमाल है ना। सो याद रखिए, जिंदगी सिर्फ वक्त मैनेज करने का नाम नहीं है, अपनी एनर्जी को भी सही ढंग से इन्वेस्ट करने का नाम है। क्योंकि एनर्जी तभी बचती है जब आप मुस्कुराहट भी बचा लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी प्लानिंग करके आगे निकल जाते हैं। यस, इज ऑल हैपनिंग राइट हियर ऑन
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

अकेले जरूर यहां पर आते हैं लेकिन कितने सारे रिश्ते बस बनते चले जाते हैं। कोई ऐसा जो कि हाथ पकड़कर यह एहसास दिला दे कि किसी को तुम्हारी फिक्र तो है ना, तू मिला तो है ना। टू ऑल द वंस जिन्होंने अपने जीवन साथी को पा लिया है, एक सपोर्ट, एक ऐसे इंसान को जो आपकी फिक्र करता है, जो आपके साथ है गिरने में, टूटने में, रूठने में, आप स्पेशल हैं।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे कहते हैं कि जो रिश्ते हैं उनको संभाल के रखना, यानी कि वो इतने हो जाए स्ट्रॉन्ग कि सब कुछ सही हो, नथिंग रॉन्ग, तो फिर काम तो करना ही पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप का राज बड़े बड़े सरप्राइजेस, गिफ्ट या रोमांटिक जेस्चर्स में छुपा है, लेकिन रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ी क्वालिटी है एक्टिवली सुनना, यानी कि लेंड योर ईयर, यानी कि सामने वाले को कुछ आप वक्त दें, उनको समझने की कोशिश करें, और फिर देखिए जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव हों लेकिन फिर भी जब आप एक दूसरे से बातें साझा करते हैं तो चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। स्ट्रॉन्ग कपल्स की ये खासियत है कि वो दोनों को एक दूसरे को वक्त देते हैं। जब कोई पार्टनर या दोस्त अपनी बात शेयर करता है तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनना रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। हो सकता है इसके अंदर छोटी छोटी बातें शामिल हो, आज काम पे पता है क्या हुआ, या फिर अरे बस में आते वक्त उसने इसने जो भी है, यानी कि उनको वक्त दीजिए, एक इमोशनल सपोर्ट दीजिए। ये छोटी सी बात है लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है। और लिसनर जरा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो इंसान है जो आपकी बात बिना जज किए सुनता है। RM2, यानी कि आप अपने मैसेजेस भेजते हैं 5491294 पर, हमेशा उतने प्यार से, क्योंकि आप और हम एक ही दुनिया में, जिसको कहते हैं संगीत की दुनिया। नो वीज़ा रिक्वायर्ड, नो पासपोर्ट, स्ट्रेट लैंड करते हैं, कंटिन्यूस टिल 12।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Right, ladies and gentlemen, जहाँ पर म्यूजिक चल रहा है वहीं पर रुकने की तो कोई प्लानिंग नहीं है, because आपने इसको नहीं निर्मनी. Hey, good morning. तुम तो afternoon करने वाली हो.
1: Hi, good morning. And yes, मैं afternoon के लिए आ रही हूँ आपके retro rhythm के साथ में.
0: Right, so आज कुछ special collection कुछ करने वाली हो.
1: Special तो हर रोज होता है.
0: हाँ, ये भी सही बात है. तो RM2 पर ladies and gentlemen थोड़ी देर में retro rhythm, तो ऐसे ही कुछ गानों के साथ थोड़ा सा झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे हम. मुझे दीजिए इजाजत है आपने एक सा रेट्रो रिदम में एक बार फिर से. कल मिलेंगे. टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ लवली आफ्टरनून. खाने पीने की प्लानिंग अपने दोस्तों के साथ. व्हाट बेटर

0: I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी जी नमस्कार।
7: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज दिन के 11:30 बजे राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे गए हैं। कल बजट पर बहसों के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए और आज तीसरे दिन पर 9 लोगों का हस्तक्षेप होना है। राष्ट्रीय सभा में आज भी बहस जारी है। आपको बता दें कि 11:30 बजे के बाद जब राष्ट्रीय सभा के कार्य शुरू हुए तो प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, विपक्षी नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन श्रम मंत्री के लिए संबोधित था और अपने जवाब में श्रम मंत्री ने जवाब दिया कि एक कार्रवाई चलाई जाने वाली थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं बजट से पूर्व, क्योंकि इससे पहले जो कदम उठाए गए थे, जो इवैल्यूएशन किया गया था, उससे कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। ईडीबी ने पिछले 12 जून को एक फिर से एक कार्रवाई चलाई थी और श्रम मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से उसकी मदद की भी मांग की गई थी एक तकनीकी अध्ययन के लिए मॉरिशस में विदेशी कामगारों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों से संबंधित। मंत्री रेजा उत्तम ने ये भी बताया कि मॉरिशस में 80% विदेशी कामगार हैं और वे कई अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और उनके मंत्रालय में ऐसे लोगों के नाम हैं 6,921 कामगार हैं जो अनियमित स्थिति में रह रहे हैं। और पुलिस से ये भी खबर प्राप्त है कि मॉरिशस पुलिस फोर्स की ओर से देश के कई इलाकों में नियमित कार्रवाइयां चलाई गई जिसके अंतर्गत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। असल में 1 जनवरी 2026 से 15 जून 2026 तक पुलिस ने कुल 428 विदेशियों को हिरासत में लिया जो गैर कानूनी रूप से मॉरिशस में रह रहे थे। याद दिलाया जाता है कि नॉन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत एक वैलिड वर्क परमिट के बिना किसी विदेशी को काम पर रखना अपराध है और इसके लिए 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ में 5 वर्षों की जेल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। युद्ध विराम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMO के महासचिव ने कहा कि ऑपरेशन ईरान, ओमान, इस इलाके के दूसरे तटीय देशों, अमेरिका और मैरिटाइम इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया जा रहा है। यूरोप में जून 2026 में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। फ्रांस में 40 से ज़्यादा लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों, तालाबों में नहाने गए और डूब गए। कई देशों में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज है। उधर भारत में मुंबई में मानसून की पहली बारिश से सड़कें, रेलवे ट्रैक और सबवे जलमग्न हो गए जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई लोकल की ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रैक खराब होने की घटना के कारण अब तक 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई। और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए, बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है। आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ, मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रामारोज शामुनी में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री सुनील प्रवीण दुली के घर

0: रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांकोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। Avenue Flamboyant Isidore Rosemey, Avenue Flamboyant Isidore Rosemey, 63 साल के 63 years old के श्री आनंदेव जोवाता, श्री आनंदेव जोवाता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके भाई हरिदेव सोवाता के घर आवेनी फ्लॉम्बॉयंट इसिडोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रोत्रॉयल बनाके में 101 8 साल की 101 years old की श्रीमती धनमंथ्या भिनिक, श्रीमती धनमंथ्या भिनिक पैदाची नाम सिपोल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोत्रॉयल बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और चमें मात्या क्लेमेंस चमें 78 साल के 78 years old के श्री सुरेश राम कलावन जो दानेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री संदेश राम कलावन के घर चमें मात्या क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2.

0: Retro Rhythm.
1: वेल गुड आफ्टरनून. रेट्रो रिदम पर यादों की कैसेट रिवाइंड हो चुकी है. 12:14 होने को है और अभी साथ दे रही है निर्मनी आपका आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही. तो साथ देते रहिए क्योंकि 70s, 80s, 90s के गाने आपके लिए होंगे स्पेशली. तो यही पर स्टे ट्यून्ड.
2: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड. Radio Mustang.

0: रेट्रो रिदम।
1: वेदर तो रंगीला है लेकिन उसके नखरे भी कम नहीं, कहीं पर धूप तो कभी बारिश और कभी दोनों एक साथ, बिल्कुल 90s के लव स्टोरीज की तरह अनप्रेडिक्टेबल लेकिन खूबसूरत। तो चलिए इसी खूबसूरत मौसम के नाम करते हैं अगला गाना, चोदोज जो भी कि नेक्स्ट डे हमारे साथ। वी हैव

0: हमारे बड़ी यालेश सोहे नाम से वी हैव जन्ना जी एंड वी हैव वीना जी नोवेल फॉन्स से. एंजॉय कीजिए ये अगला गाना.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे मौसम के मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन रेट्रो रिदम के सुर आपके मूड को जरूर बना देंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल दोज जो अभी कनेक्टेड हुए हैं। सिलसिला जारी है आपके रेट्रो रिदम का विद हार्मनी। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग।
0: RM2 Radio Mastery.

True Rhythm. अगर बॉलीवुड म्यूजिक की बात हो और किशोर कुमार जी का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है जज साहब। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर जनरेशन को पसंद आता है, एंड आज भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अभी भी गुनगाते हैं। किशोर कुमार जी का बीट इन द रिमेक्स है या फिर टिकटॉक वीडियोस पर, तो चलिए एंजॉय करते हैं अनदर सॉन्ग, इस बार किशोर कुमार जी की आवाज़ में, खास आप के लिए जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधि निमा. नमस्कार.
4: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार. बजट पर चर्चा के तीसरे दिन आज 9 सांसदों को राष्ट्र

0: सभा में अपनी बात रखनी है, लेकिन इससे पहले आज सुबह 11:30 बजे श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने सदन में अपनी बात रखी, क्योंकि विपक्ष के नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन उनको संबोधित था। पिछले साल के बजट में फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली शुरू करने से पहले क्या श्रमिकों की कमी का कोई मूल्यांकन किया गया था? मंत्री के अनुसार नहीं, क्योंकि ये प्रणाली अभी तक लागू ही नहीं हुई है। टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सका, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने 12 जून को फिर से टेंडर जारी किया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर तकनीकी अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता मांगी गई है। रिजा उद्दीन ने यह भी जानकारी दी कि मॉरिशस में 80% विदेशी श्रम शक्ति मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 6,921 श्रमिक अनियमित स्थिति में हैं। कल बजट बहस के दूसरे दिन 18 सांसदों ने अपनी बात रखी, जहां विपक्ष की सांसद जुआना बेहोंजी ने सोवरेन फ्यूचर फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। वहीं पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने इस बजट की दिशा की सराहना की। दूसरी ओर लेबर पार्टी के सांसद विराज बिचुक ने सरकार द्वारा किए जा रहे फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान माउमेद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा, अतः मौजूदा पर्सनलाइज्ड प्लेट या पुरानी प्लेटों के धारकों को इन वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले साल के बजट में घोषित की गई नंबर प्लेटों की नई श्रृंखला से अब तक सरकारी खजाने में 55 मिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। इन नई प्लेटों की ऑनलाइन बिक्री 17 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। और विदेश में इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के लिए रेड वार्निंग जारी की जाएगी, जो गुरुवार रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। ये चेतावनी का सबसे गंभीर स्तर है, जिसका अर्थ है कि मौसम जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में लंदन, मिडलैंड्स के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्व वेल्स और दक्षिणी इंग्लैंड शामिल हैं। इंग्लैंड और वेल्स के अधिकांश हिस्सों में पहले से ही अम्बर वार्निंग लागू है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारुद बनाकरनी 101 साल की 101 years old की श्रीमती दनमतिया भिनिक पैदाइशी नाम सिपुल और जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर रारुद बनाकर से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लाक में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती सिंह गुलाम पैदाइशी नाम ज्योति और जो बल फार्म वेंसित नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे रविन सिंह गुलाम के घर नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लाक से उठाकर कौंडमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। नंबर 20 शातू दो स्ट्रीट थ्रोंगबर्ग पोटली में 65 साल की 65 years old की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाइशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शातुदो स्ट्रीट थोंगबाव पोटली से उठाकर थोंगबाव की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:04 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:11 हुए हैं, कहते हैं 1:11 को भी विश मांग सकते हैं। एंड यस आरएम टू रेडियो मस्ती इज बैक आपके रेट्रो वाइब्स के साथ। इट्स निलमनी और एक आवर बचा है आपको फिर से उन यादों को ताज़ा कराने के लिए। इस बार आपके लिए डुएट आवाज़ों में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में एक गाना खास।

0: Retro Rhythm.
1: जिनको मिलना होता है वो मिलकर रहते हैं ना, जिनके मैसेजेस हम तक पहुंच कर रहे हैं, आपको बड़ी सी झप्पी देते हैं आप हैं ललिता जी, गुड आफ्टरनून। आप एंजॉय कर रही हैं लंच टाइम और गाना डेडिकेट कर रहे हैं अपने कलीग्स और जितन फैमिली के लिए। बॉम्बे से जुड़ गई है माला जी, गाना डेडिकेट कर रहे हैं सुखराम भीम और कावले साहब फैमिली के लिए। अरे वाह, और भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्रकाशवती जी भी कनेक्टेड हो चुके हैं, नमस्ते जी। आप एंजॉय कर रहे हैं प्यारे गीतों को और आपकी यहाँ अभी भी मॉर्निंग है। पेरिस से वी हैव देव जी, तुझे देखा तो ये जाना सनम का गाना मांग रहे हैं अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए, और जगमानी जी भी कनेक्टेड है। हेलो अहमद जी, गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी अफेज के लिए, तो हो जाए आप सभी के नाम गाना जो अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं। आरम टू रेडियो मस्ती पर नेक्स्ट गाना गोज आउट टू यू।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: दोस्तों आपको पता है आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल फेरी डे को। बचपन में हम सब ने परी की कहानियां जरूर सुनी होगी और बॉलीवुड ने भी हमें कई ऐसे गाने दिए हैं जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। कभी श्रीदेवी जी किसी परी से कम नहीं लगी तो कभी माधुरी दीक्षित ने अपनी मुस्कान से जादू बिखेरा। और जब म्यूजिक इतना खूबसूरत हो तो लगता है कि जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं। इसी मैजिकल एहसास को फिर से रिवाइव कराने के लिए अनदर एवरग्रीन मेलोडी ला रहे हैं आपके लिए जो अभी भी दिलों को चुराती है। तो आपको इंजॉय करने देते हैं आपके रेट्रो रिदम के सफर पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti

0: Retro Rhythm.
1: अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया मेरा, लेकिन आप कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, क्योंकि नेक्स्ट आ रही है आपके लिए बॉम्बे टॉकीज, एंड आपको अकंपनी करने के लिए परी आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड, यही आरएम2 रेडियो मस्ती पर, एंड हैव अ ग्रेट डे.

0: शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
1: अच्छा दादा।
0: हाँ तो बच्चों।

0: नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो।

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार. बजट पर चर्चा का आज तीसरा दिन है. आज सुबह 11:30 बजे श्रम मंत्री गजाउद्दीन ने सदन में अपनी बात रखी. उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया. पिछले साल के बजट में फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली शुरू करने से पहले क्या श्रमिकों की कमी का कोई मूल्यांकन किया गया था? मंत्री के अनुसार नहीं, क्योंकि ये प्रणाली अभी तक लागू ही नहीं हुई है. टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सका, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने 12 जून को फिर से टेंडर जारी किया है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर तकनीकी अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता मांगी गई है. गजाउद्दीन ने यह भी जानकारी दी.

0: की मौसम में 80% विदेशी श्रम शक्ति मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 6,921 श्रमिक अनियमित स्थिति में हैं। कल बजट बहस के दूसरे दिन 18 सांसदों ने अपनी बात रखी, जहां विपक्ष की सांसद जुआना बेगौशे ने सॉवरेन फ्यूचर फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। वहीं पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने इस बजट की दिशा की सराहना की। दूसरी ओर लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने सरकार द्वारा लिए किए जा रहे फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान माहमूद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा, अतः मौजूदा पर्सनलाइज्ड प्लेट या पुरानी प्लेटों के धारकों को इन वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले साल के बजट में घोषित की गई नंबर प्लेटों की नई श्रृंखला से अब तक सरकारी खजाने में 55 मिलियन रुपये जमा हो चुके हैं। इन नई प्लेटों की ऑनलाइन बिक्री 17 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। और विदेश में पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की लहर का सामना कर रहा है, जिसने कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और फ्रांस में हजारों लोगों की बिजली गुल हो गई है। उधर इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को मिलान और रोम सहित 16 शहरों में रेड हीट वेव अलर्ट घोषित किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। La Chapelle Ardente et Yensen sera Road Bobasseme, 78 साल के 78 years old के श्री देवन स्वयंभर, जो दयानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे La Chapelle Ardente et Yensen sera Road Bobasseme से उठाकर बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:15। नंबर 20 शातु दो स्ट्रीट थोंगबा पोटली में 65 साल की 65 years old की श्रीमती रागिनी रामलाल, पैदायशी नाम तिलक और जुनंदी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शातु दो स्ट्रीट थोंगबा पोटली से उठाकर थोंगबा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लाक में 88 साल की 88 years old की श्रीमती सुभावती सुगुलाम, पैदाशी नाम ज्योति और जोबल फार्म वेंसेट नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे रवींद्र सुगुलाम के घर नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लाक से उठाकर कौंडमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. More music in the mix. Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.

0: सो वेल फ्रेंड्स यहां पर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ आ गए हैं आपके हमसफर बनकर 2 बजे का ये टाइम जहां पर लेकर आते हैं आपके लिए बॉलीवुड अपडेट्स और साथ में कुछ ऐसे गाने जो आपके इस आफ्टरनून मूड को सेट रखे मैं हूं परी आपके साथ इट्स टाइम फॉर बॉम्बे टॉकीज वेलकम कर रहे हैं आपको ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन लेकिन विद अ ट्विस्ट दैट्स फॉर एवरीवन जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं एंजॉय दिस वन
1: प्यार के

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स 2:22 हो गए हैं एंड मैडॉक फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुए है। सिनेमा घरों में रिलीज होने के सिर्फ 5 दिनों में ही शाहिद कपूर स्टार फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाल कर दिखाया है। दरअसल ये फिल्म 100 करोड़ का जो आंकड़ा है इसे पार कर गई है और एक पोस्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 ने रिलीज के 5 दिनों में दुनिया भर में 106.61 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, शानदार ओपनिंग वीकेंड और दमदार सोमवार के बाद कॉकटेल 2 ने मंगलवार को भी जबरदस्त परफॉर्म किया और इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई अब 106.61 करोड़ तक पहुंच गई है। दर्शकों का फिल्म के प्रति बढ़ता प्यार और ब्लॉकबस्टर बनता है इसको ब्लॉकबस्टर बना रहा है और साथ ही इसकी रफ्तार अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है। सो यहाँ पर इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि इस फिल्म में कॉमेडी भी है, रोमांस भी है और इमोशंस भी है। सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, देखिए, बताइए फिल्म आपको कैसी लगी। वैसे मैंने भी इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है लेकिन रिव्यूज तो आ रहे हैं काफी अच्छे, तो वेल लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म और क्या कमाल करती है। So for now, this one goes out for all the listeners and for all the fans of Cocktail. इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों, so well, आपकी इस afternoon को हम बना रहे हैं खास and special. कुछ latest songs, कुछ Bollywood updates, आपके नाम, परी का साथ, till 4 p.m. on RM2 Radio Masti.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों, इट्स 2:55 साथ दे रहे हैं आप हमारा ऑन दिस ब्यूटीफुल वेनसडे आफ्टरनून, सर्दियों वाली ये दोपहर जहां पर हम कर रहे हैं आपका वेलकम। इसी ट्रैक के साथ दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर और उसके बाद लौट कर आएंगे विद सम मोर बॉलीवुड अपडेट्स एंड विद सम मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मैं हूं परी आपके साथ 4 PM। उम्मीद करते हैं आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का ऑन 5499-1294।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Wednesday, 24th of June, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. आज सुबह राष्ट्रसभा में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई, वो था विदेशी श्रम शक्ति और श्रमिकों की कमी. विपक्ष नेता जोली शोंगा द्वारा पेश किया गया PNQ विदेशी श्रमिकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत उपायों पर केंद्रित रहा. ये सवाल श्रम मंत्री रिजाउद्दीन को संबोधित किया गया. विपक्ष ने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस नई फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली की घोषणा करने से पहले किसी प्रभाव अध्ययन का सहारा लिया था. अपने जवाब में रिजाउद्दीन ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की फास्ट ट्रैक सेवा अभी शुरू नहीं हुई है. पहले प्रयास के विफल रहने के बाद 12 जून को एक नया टेंडर जारी किया गया है. मंत्री ने आगे कहा कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञता मांगी गई है. साल की शुरुआत से पुलिस ने पूरे देश पर 49 अभियान चलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध रूप से रह रहे 428 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 400 को पहले ही स्वदेश वापस भेजा जा चुका है. श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किसी भी नियोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून मंत्रालय को प्रशासनिक दंड

0: लगाने की अनुमति नहीं देता है और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी। इस समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने अब वर्क परमिट के लिए किसी भी नए आवेदन या रिन्यूअल की जांच करने से इनकार कर दिया है यदि नियोक्ता ने उन कम से कम 90% श्रमिकों की स्थिति को नियमित नहीं किया है जिनके परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। मंत्री के अनुसार ये कदम पहले ही परिणाम देने लगा है, विशेष रूप से कपड़ा और निर्माण सेक्टरों में। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा। और विदेश में अमेरिका और ईरान ने परमाणु निगरानी सहित कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी बयान दिए हैं, जबकि वार्ताकार 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने के लिए जोर दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अंतिम समझौता होने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल्स नहीं वसूल पाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 20 शातुदेव स्ट्रीट थोंगबोपोट लुई में 65 साल की 65 years old की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शातुदेव स्ट्रीट थोंगबोपोट लुई से उठाकर थोंगबो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती एंड का टेलीफोन रिंग रिंग रिंग आपकी रिंग तो हम तक पहुंचते रहते हैं, यानी कि आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस। चलिए

दोस्तों वार्म वेलकम आप सभी का। 3:06 हो गए हैं वेनसडे की ये खूबसूरत सी दोपहर जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। लेकर आए हैं वी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स। कुछ गाने ऐसे जो हमेशा से दिल के करीब थे लेकिन विद अ ट्विस्ट। कुछ रीमेक्स होंगे, कुछ रीमिक्सेस एंड कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स, लेकिन लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए बस साथ देते रहिए ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा टिल 4 पीएम। फॉर नाउ वी हैव हर्ष पटेल हमारा साथ दे रहे हैं आप। सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून। दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस।

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 3:11 हो गए हैं। बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं और एक्टर विकी कौशल कैटरीना कैफ ने नवंबर 2025 में बेटे विहान का वेलकम किया। कैटरीना और विकी के बेटे का चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कैटरीना अक्सर बेटे की झलक दिखाती रहती है। हाल ही में विकी कौशल के पिता श्याम कौशल ने बताया कि आखिर विकी और कैटरीना का बेटा जो है वो ज्यादा किसकी

तरह दिखता है। एक बातचीत के दौरान शाम कौशल ने बताया कि उन्हें लगता है कि विहान ज्यादा विकी जैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि विहान मेरी जिंदगी में जब से आया है तब से मेरी लाइफ एकदम बदल गई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो काम में बिजी रहते हैं वो उसे हग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस टाइम वो उन्हें बहुत सारे वीडियो कॉल करते हैं और उनसे बातें करते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो कहते हैं कि मैं जितना भी कर सकता हूं, उतना मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी लाइफ में ये क्यूट सा ग्रैंड किड उन्होंने भेजा है। सो दैट वॉज श्याम कौशल, जिन्होंने अपने दिल का हाल साझा किया। अब ये तो है ग्रैंड डैड बन चुके हैं एंड उनकी डॉटर इन लॉ कैटरीना कैफ, ये भी लोग कहते हैं कि शी इज सच अ होमली पर्सन, यानी कि जब भी सास ससुर की बात होती है, परिवार की बात होती है, वो उनकी प्रायोरिटी होता है। और हर कोई कैटरीना कैफ को जानता है कि शी इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। काम जब होता है तो उनका पूरा डेडिकेशन काम की ओर होता है, लेकिन अब जब से वो एक वाइफ और अब एक मम्मी बनी है, उसके बाद तो लगता है कि उनकी प्रायोरिटी बस उनका परिवार है। तो चलिए अभी के लिए दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ कैटरीना कैफ एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, हमारे डियर लिसनर्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, आपकी आफ्टरनून को सजा रहे हैं बॉलीवुड खबरों के साथ एंड सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, 3:28 हो गए हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। वैसे तो हम आपके लिए हमेशा बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक चलाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये जो शो है वो ऑफ कोर्स डेडिकेटेड होता है हमारे सभी डियर लिसनर्स के नाम, जो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो 23rd of June मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया, और इस सम्मान को लेने के लिए मंच पर जाते समय 60-year-old सिंगर अपनी एक असिस्टेंट की मदद से वहां पर पहुंचती नजर आई। बेहद कमजोर भी वो नजर आ रही थी और इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और अब उनके जो फैंस है वो उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंतित है। वहीं अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर म्यूजिक को अपने योगदान के लिए पद्म भूषण मिलने पर आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बारे में भी बात की, और अलका याग्निक ने अपने नोट में पिछले 2 सालों से अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 सालों से मैं लाइमलाइट और पब्लिक अपीयरेंसेस से दूर रही हूं और अपनी जिंदगी के सफर के बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं सेहत से जुड़ी मुश्किलों से गुजर रही हूं, और इस दौरान आपका प्यार, दुआएं, मैसेज और आपका जो साथ है वो हर कदम पर मुझे काफ़ी इंस्पायर कर रहा है। सो यहाँ पर उनकी हालत देखकर उनके फैंस काफ़ी सैड हुए, बिकॉज ये तो हम जानते हैं दैट शी इज़ अ लेजेंड, और 90s के दशक में उनकी आवाज़ ने क्या जादू बिखेरा। और कुछ गाने ऐसे रहे जिनको हम आज भी जब सुनते हैं तो अलका याग्निक की जो वो क्यूट स्माइल है, जो इनोसेंस है, वो उनकी आवाज़ में आज भी नज़र आती है। सो वेल, हम तो गुड विशेज हम उन तक पहुँचा रहे हैं, उनके सभी फैंस की ओर से उन्हें विश करेंगे अ क्विक रिकवरी। लेकिन अभी के लिए जो उन्हें पद्म विभूषण मिला है, इससे उन्हें सम्मानित किया गया है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट बात उनके सभी फैंस के लिए। सो गुड विशेज उन तक हम पहुंचा रहे हैं, और साथ ही दोस्तों आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो बस आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर थोड़ी ही देर में।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: बजकर 50 मिनट हो गए हैं एंड यहां पर वी टाउन की खबरों के बाद इट्स टाइम कि हम आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपके अपनों तक पहुंचाएं. सो यहां पर विजया जी साथ दे रही हैं. आप हमेशा की तरह कनेक्टेड हैं. आप हमारे साथ दिल से दिल का कनेक्शन आपका भी बन गया है. सो थैंक यू जी. अगला गाना होगा आपके नाम श्यामा रितेश रानी निष्ठा तनीश यूश्रा वशिष राधा जयश्री शकील सभी जीवन परिवार बेल ऐसे हमारा साथ दे रहे हैं एंड कहते हैं गाना हो जाए फॉर द एंटायर क्रू जो इतना प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड है. थैंक यू सो मच जी. गाना होगा आप सभी के नाम. एंड झाना जी फ्लैग से आप भी आई हैं अपना प्यार लेकर डेडिकेटिंग गाना फॉर रीमा जनिता सेष्टा अंशनी सिल्विया युवे कृषि शिवसरन परिवार जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम फ्लैग. गाना होगा उनके नाम. एंड यहाँ पर मिदिष्ट हमारे साथ कनेक्टेड है. आप भी आई डू होप यू आर एंजॉइंग द सिलेक्शन. गाना होगा आपके लिए एंड एंजॉइंग द प्रोग्राम एंजॉइंग द शो. रोशनी हमारी प्यारी सी रोशनी हमारा साथ दे रही हैं आप. गाना होगा आपके नाम भी. साथ ही ललिता जीतन आ गई हैं घर गर्मा गर्म चाय और साथ में ये गाने हो गया है परफेक्ट कॉम्बिनेशन. सो गाना होगा आपके परिवार के नाम. ललिता जीतन लावांचे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. गाना आप सभी के नाम.

And well, friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है गिनिशा लेकर your अवतार vibes. आपसे मुलाकात होगी कल same place same time 2 to 4 PM in your Bombay Talkies. तब तक के लिए stay connected RM2 Radio मस्ती के साथ.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. आज सुबह राष्ट्रसभा में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई. वो था विदेशी श्रम शक्ति और श्रमिकों की कमी. विपक्ष नेता जोली जोंगा द्वारा पेश किया गया पीएनक्यू विदेशी श्रमिकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत कदमों पर केंद्रित रहा. ये सवाल श्रम मंत्री रेसा उतिम को संबोधित किया गया. विपक्ष ने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस नई फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली की घोषणा करने से पहले किसी प्रभाव अध्ययन का सहारा लिया था. अपने जवाब में रेसा उतिम ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की फास्ट ट्रैक सेवा अभी शुरू नहीं हुई है. पहले प्रयास के विफल रहने के बाद 12 जून को एक नया टेंडर जारी किया गया है. मंत्री ने आगे कहा कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञता मांगी गई है. साल की शुरुआत से पुलिस ने पूरे देश पर 49 अभियान चलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध रूप से रह रहे 428 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 400 को पहले ही स्वदेश वापस भेजा जा चुका है. श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किसी भी नियोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून मंत्रालय को प्रशासनिक दंड लगाने की अनुमति नहीं देता है और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी. परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कल वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए. उस्मान माउमेद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनल

0: एस नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा। और विदेश में चीन के आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि चीन में अत्यधिक मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ रही है और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रही हैं, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में। पूर्वानुमान बताते हैं कि इस साल मुख्य बाढ़ के मौसम के दौरान अत्यधिक मौसम की घटनाओं के औसत से अधिक रहने की संभावना है। सोमवार रात से बुधवार तक दक्षिण पश्चिमी चीन यांगसी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों और दक्षिण चीन के पश्चिमी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 4:10 हुए हैं यू आर लिसनिंग टू रफ्तार वाइब्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती

Well guys, check your time studio की घड़ी में exactly 4:16 हो चुके हैं. Wishing all of you a very good afternoon. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. Wednesday 24th of June 2026. आप सभी लोगों का स्वागत है जी in this beautiful show. That's your rough tar vibes on RMT Radio Masti. बहुत सारे हमारे ये प्यारे प्यारे listeners office से निकल चुके होंगे. Yes, गाड़ी में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो या बस में बैठे हो या हो सकते हैं बस स्टैंड पे खड़े हो, मेट्रो में हो, वेल कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, थैंक यू सो मच ये साथ निभाने के लिए. एंड टू ऑल ड्राइवर्स, हाँ जी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि थोड़ा गाड़ी जो है ना आज आराम से चला लेना. बरसाती मौसम है, रोड काफ़ी स्लिपरी होते हैं, सो आपको तो पता

कि आराम से गाड़ी चलाना है धीरे धीरे हौले हौले एंड आई एम हियर टू गिव यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. हाँ जी, कंपनी में तो हम हमेशा होते ही रहते हैं. आपको तो पता है आरएमटी रेडियो मस्ती एक ऐसा रेडियो स्टेशन है अकॉर्डिंग टू ऑल चॉइसेस आपके बॉलीवुड म्यूजिक हम लेकर आते हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड. और आ ही गई हूँ तो ऑब्वियसली खाली हाथ तो नहीं आई हूँ. आई गॉट यू अ गिफ्ट, वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, सही जवाब देना है आपको ऑन 54994 जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गिव मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ. फुल नेम यानी नेम और सरनेम. ओके, तो चलिए यू जस्ट हैव टू टेल मी द अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल. द अपकमिंग मूवी बॉलीवुड जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, जो रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड ऑन 26 जून, यानी कि एग्जैक्टली 2 दिनों के बाद ये मूवी रिलीज होने वाले. इट्स गोइंग टू हिट द थिएटर्स, जिसमें आप देख पाएंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड अर्शद वारसी एंड इवन दिशा पतानी. लेकिन एक और हीरोइन होगी उस मूवी में जो काफ़ी सालों के बाद अपना कमबैक कर रही है बॉलीवुड में, ऑपोजिट अक्षय कुमार. जी हाँ, उस हीरोइन का नाम क्या है? सो अपकमिंग मूवी वेलकम टू द जंगल में जो रिलीज होने वाली है दो दिन के बाद ऑन 26 जून 2026, जिसमें आप देख पाएंगे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, अर्शद वारसी एंड दिशा पटानी एंड देयर इज वन मोर हीरोइन, एक और एक्ट्रेस होगी जो अपना कमबैक काफी सालों के बाद कर रही है बॉलीवुड में ऑपोजिट अक्षय कुमार. आपको बस मुझे बताना है हीरोइन का नाम क्या है. गिव मी द राइट आंसर राइट नाउ राइट अवे एंड विन अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑन 5499 1294 पर 9994. I'm just waiting for your answers.

वेल गाइस टाइम बीता चला जा रहा है आई रियली होप दैट यू आर लविंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का सिलेक्शंस वेल काम की जगह से निकल चुके हो ऑफिस को छोड़ चुके हैं एंड नाउ यू आर हिटिंग द रोड सो ड्राइव केयरफुली और आराम से गाड़ी चलाना एंड वी हैव गॉट यू द लवली ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट फॉर दिस आफ्टरनून सो दैट आप सारे टेंशन वेंशन को भूल जाइए और आप बस अपने इस खूबसूरत जर्नी पर कंसंट्रेट कर सके तो चलिए जी फिलहाल के लिए आपको याद दिला दे कि थोड़ी देर पहले वी हैड अ गेम जहां पे हमें आपको देना है वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड जी हाँ और सवाल पूछा गया था द अपकमिंग मूवी जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल जो दो दिन के बाद यस रिलीज होने वाली है ऑन द 26 June 2026 ऑल द सिनेमाज वर्ल्ड वाइड जिसमें आप देख पाएंगे अक्षय कुमार को सुनील शेट्टी परेश रावल और शर्वारसी एंड इवन दिशा पतानी हमने पूछा था कि उसमें एक और हीरोइन अपना कमबैक कर रही है काफी सालों के बाद ऑपोजिट अक्षय कुमार उनका नाम क्या है एंड द राइट आंसर इज रवीना टंडन यस यू हर्ड इट राइट इट्स रवीना टंडन शी इज डूइंग हर कमबैक आफ्टर लॉन्ग टाइम बॉलीवुड में एंड ऑपोजिट अक्षय कुमार एंड द सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग और आज का लकी विनर का नाम निकल आया है हमारे लकी ड्रॉ में वो है यवना सिडू शी इज फ्रॉम एसएपल सो कंग्रेचुलेशंस टू यू माय स्वीट हार्ट यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एमबीसी हियर टू लेट यू नो हाउ यू कैन गेट योर गिफ्ट सो कंग्रेचुलेशंस एंड बस ऐसे हमारा साथ देते रहना यू नेवर नो हो सकता है जो लोग आज नहीं जीते यू कैन ट्राई योर लक सम अदर टाइम यू कैन बी आवर लकी विनर और वैसे भी हम आपको याद दिला दे टू ऑल आवर लिसनर्स इफ यू आर लुकिंग यस इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया मिस्टिक वर्ल्ड .mu This is the best place. You can discover their exclusive gift cards. Gold and silver jewelry bhi hai, authentic crystals bhi hai, and even stunning home decor. Mysticworld.mu ke paas exactly ye hai jo aapko chahiye. Whatever you are looking for, you're gonna get it there. So, aap unke ye jo website hai, visit kar sakte hai on mysticworld.mu ya unko phone kar sakte hai on 5880-7652. 5880-7652. So congratulations once again to our lucky winner, jiska naam hai Yavna Sidhu, and she is from Sepal.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और एमटू
2: ट्रैफिक अपडेट
3: तो चलिए जी कुछ ट्रैफिक अपडेट आप लोगों के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती ऑन दिस इवनिंग पीक आवर. ऑफ कोर्स ऑफिस के बाद तो पीक आवर शुरू ही हो ही जाती है. सो जितने भी हमारे ड्राइवर्स साथ दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी जैसे कि आपको पता है बारिश कुछ एरियाज में हो रही है तो इसलिए रोड्स काफ़ी स्लिपरी जो है हो सकती हैं. सो कृपया एक्स्ट्रा कोशन के साथ ड्राइव करें और सेफ डिस्टेंस जो है मेनटेन करें. और अगर पोर्ट्रिस से साउथ की तरफ ट्रैफिक जो है हम देख सकते हैं बिल्डअप शुरू हो चुका है और स्पीक आवर हैज स्टार्टेड टू. आप धीरे धीरे गाड़ी चलाना. डिलेज एक्सपेक्टेड ऑन मेजर रूट्स हेडिंग टू द साउथ. और वैसे पोर्टलिस की तरफ से निकल के अगर नॉर्थ की तरफ भी आप जा रहे हो तो ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कंजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. अगर आप गैजुई जो है क्रॉस कर चुके हैं और फिनिक्स की तरफ जा रहे हो तो ट्रैफिक मूविंग है बट स्लो है. फिनिक्स से साउथ की डायरेक्शन में भी स्लो ट्रैफिक कंडीशन रिपोर्ट हो रहा है अभी. और ऐसे इफ यू आर हेडिंग टू Verdun Road and you're heading to the north from Verdun. So I can see it's also moving slowly. We have increasing volume of vehicles and Quatrebonne or Rosilla as usual. ये जो areas हैं जैसे हर afternoon office hours के बाद होता है traffic slow moving है and as usual you know peak hour congestion तो होता ही रहता है. लेकिन छोटी सी advice आप लोगों के लिए हमारे प्यारे प्यारे drivers जो सुन रहे हैं जल्दी पहुँचने के चक्कर में risk मत ले लीजिए. स्पीड कंट्रोल में रखें. इंडिकेटर्स जो है यूज़ कीजिए और पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए और आपका और दूसरों का सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना. तो ड्राइव सेफ स्टे अलर्ट एंड हैव अ सेफ जर्नी होम. एंड अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाना चाहोगे रिगार्डिंग ट्रैफिक अपडेट्स सो 5499-1294 इज द नंबर.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए जी चेक योर टाइम 4:43 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज और हमारे स्पोर्ट्स गुरु ऑलरेडी रेडी हैं। सो गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद।
4: लेट्स गो फॉर वर्ल्ड कप स्पेशल। वैसे कोलंबिया की टीम को कैफेटेरोस कहते हैं। आज सुबह कॉफी पीकर चाय के साथ भी कोलंबिया की टीम नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। आज सुबह मुनोज के गोल पर कोलंबिया ने कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को 1-0 से हराया। इस प्रकार कोलंबिया की टीम अपने ग्रुप में 6 अंकों के साथ आगे हैं। पोर्टुगल दूसरे पोजीशन पे, उसके पास है 4 अंक। सो कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल वाला मैच ग्रुप टॉप करने के लिए डिसाइसिव होगा। रोनाल्डो इज बैक। पोर्टुगल में रोनाल्डो के लिए कह सकते हैं फॉर्म तो टेम्पोरेरी है पर क्लास परमानेंट है। अपने दूसरे मैच में ही रोनाल्डो का जादू चल पड़ा। 6 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बना CR7। जब रोनाल्डो चमकता है तो पोर्टुगल पछाड़ता है। 5-0 से सिलेसाओ ने उज्बेकिस्तान को हराया। इसमें रोनाल्डो का डबल, नूनो मेंडेस का एक गोल, नेमाटोव का एक ऑन गोल, फिर राफेल लियाओ का एक गोल। गाना ने इंग्लैंड को रोका। पहले मैच में 4-2 की जीत के बाद द थ्री लायंस कुछ ज्यादा गा रहे थे, दहाड़ रहे थे, लेकिन गाना ने उनका गाना बंद किया। उसके सामने गाना की टीम इंग्लैंड को गोल स्कोर करने से रोक पाई। ब्रूटल रियलिटी चेक, ऐसा तोमा टुगल ने कहा, लेकिन नो पैनिक। सो ग्रुप एल में इंग्लैंड आगे है 4 अंकों के साथ। गाना के पास भी 4 अंक है। क्वालिफिकेशन के लिए काफी है पर किस नंबर पर यह जानना बाकी है, क्योंकि क्रोएशिया ने भी अपनी पहली जीत दर्ज की। एम्ब्लेमैटिक कप्तान लुका मॉड्रिच के लिए ऐतिहासिक दिन था। क्रोएशिया के साथ उसका 200वां मैच, डबल सेंचुरी पूरी की। 1-0 से क्रोएशिया ने पनामा को हराया। इस प्रकार पनामा ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा, जबकि क्रोएशिया के चांसेस अभी तक हैं। इस ग्रुप में इंग्लैंड का आखिरी मैच पनामा के खिलाफ है और क्रोएशिया वर्सेस गाना दोनों मैच इस सैटरडे को एक ही समय रात्रि के 1 बजे। आज ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच खेले जाएंगे, दोनों मैच एक ही समय रात के 11 बजे एक ही समय, ताकि कोई हेर फेर न हो। बोस्निया वर्सेस कतार, स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा। कनाडा और स्विट्जरलैंड ग्रुप के टॉप पोजीशन के लिए खेलेंगे। दोनों के पास 4-4 अंक हैं। जो जीतेगा टॉप पोजीशन ले जाएगा। बोस्निया और कतार दोनों के पास 1-1 अंक है। जो जीतेगा बेस्ट थर्ड से क्वालिफाई हो सकता है और जो हारेगा घर जाएगा। ग्रुप सी के मैच भी आज खेले जाएंगे। यहां पर ग्रुप का टॉप पोजीशन दाव पे है। ब्राजील और मोरक्को के पास 4-4 अंक हैं। स्कॉटलैंड के पास 3 अंक, आईची 0। आईची के खिलाफ मोरक्को की टीम को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, पर ब्राजील को स्कॉटलैंड से बच के रहना होगा। फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में यह मैच हार्ड होगा, तगड़ा मुकाबला। स्कॉटलैंड के लिए एक ड्रॉ काफी है बेस्ट थर्ड से क्वालिफाई होने के लिए। जीत हुई तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन। स्कॉटलैंड में एंडी रॉबिन्सन, फर्ग्यूसन, मैक्टोमिने, मैकगीन, एडम्स जैसे अनुभवी तजुर्बे वाले स्टार खिलाड़ी हैं, पर ब्राजील के लाइनअप में अलिसन, डानिलो, मार्किनोस, गैब्रियल, डुग्लास सांतोस, ब्रूनो गुमारेस, कैसेमिरो, लुकास पकेटा, रायन, मैथ्यूस कुन्हा और विनिसियस जूनियर होंगे। राफिना इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएगा, नेमा बेंच पर होगा। फिर कल सुबह 5 बजे ग्रुप ए के 2 मैच, चेक रिपब्लिक वर्सेस मेक्सिको, साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया। मेक्सिको पहले से ही क्वालिफाई है ग्रुप टॉप करके, दूसरे पोजीशन पर है साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ। मतलब साउथ कोरिया को कम से कम 1 अंक चाहिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। अगर चेक रिपब्लिक की जीत हुई और दक्षिण कोरिया की हार, चेक रिपब्लिक दूसरा स्थान ले सकेगा। साउथ कोरिया को बेस्ट थर्ड प्लेस का इंतजार करना होगा।

0: पर खेले गए फुटबॉल के मद्देनजर साउथ कोरिया फेवरेट है सेकंड पोजीशन के लिए। सो ये सभी मैच खेले जाएंगे। ग्रुप स्टेज के फाइनल गेम्स में काफी ट्विस्ट और टर्न हो सकते हैं। देखा जाए तो 32 टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी, 32 टीम्स, केवल 16 घर वापस, मतलब मोर डिफिकल्ट टू बी एलिमिनेटेड दैन टू क्वालिफाई। दो प्रमुख बदलाव आए हैं, यानी चेंजेस निर्णायक होंगे। एक तो पहली बार वर्ल्ड कप में गोल डिफरेंस के स्थान पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे जाएंगे, ये अगर दो टीम में बराबर अंक पे हो। इसके अलावा इस बार 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स क्वालिफाई होंगी। कुछ टीमों के लिए फॉर्मूला अनफेयर है, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो टीमें इस वीकेंड में खेलेंगी उनको पता चल जाएगा कि उन्हें क्या रिजल्ट चाहिए, किस टीम से बचें, किस टीम के साथ खेलें। और अंत में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने आएगा और ट्रॉफी सेरेमनी में भी भाग लेगा। फीफा प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो ने कंफर्म किया। कुछ लोग सोचने लगे हैं कहीं USA की टीम को खुद डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने आ रहे हैं क्या? Who knows? So these are the latest from the World Cup.
1: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Méga promo code Quality Déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé l'eau la voie. La lumière moderne, prix choc.

0: That was such a beautiful remake, especially आप लोगों के लिए मुकाला मुकाबला. बिल्कुल लैला, कैसे हो लैला जी? तो चलिए 5:20 हो चुके हैं and I've got you. और भी खूबसूरत गाने lined up में हैं आप लोगों के लिए प्ले करेंगे in your Raftaar vibes. But still, for now let's check it out to your dedications. किसने किसको याद किया है and बाकी जो हमारे listeners हमें सुन रहे हैं, अगर अभी आप गाड़ी में हो या बस में हो, so just turn up the volume a little bit higher, क्योंकि अगला गाना आपके लिए भी हम प्ले करना चाहेंगे. So good afternoon जी, अब्दुल एंड सहरा बानो जी, कैसे हो आप? ये अगला गाना खासकर आपके लिए. We have the next one for you, Ragini. क्या जलवे के साथ आई हो, just love it. Thank you so much. जानम समझा करो, कोशिश करेंगे. Love हुआ, किससे हुआ मेरी जान? That's a beautiful track. Even I love that. I'm gonna play that for you later on. और आपकी दो बेटियों के लिए जिनका नाम है ईशान पूर्वा के लिए, जो बीमार हैं just like me. मेरा भी गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है काफ़ी दिनों से, तभी तो हम बार बार आप सभी लोगों को कहते हैं कि भीगना मत, कीप योरसेल्फ वार्म, गरम गरम चाय, गर्म गरम पानी, गरम गरम जो हनी लेमन ये मिला के चाय के साथ पीते हैं, जस्ट टू अवॉइड हैविंग अ बैड कोल्ड, बैड कफ. एक्चुअली देखा जाए तो मौसम बहुत काफ़ी बदल गया है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, दैट्स व्हाई ऐसे मौसम में सभी लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं. सो प्लीज़ अपना, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखना, ठीक है? सो आपकी बेटियां जो हैं ईशा और पूर्वा दोनों साथ दे रही हैं, सो ये अगला गाना उनके नाम भी. वी हैव कविता. हे कविता, वेलकम इन माय किचन. गिनी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है मेरी जान, समय हर जगह पहुंच जाती है गिनीशा. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वैसे नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच कविता. ये अगला गाना आपके लिए, आपका इस मैसेज भेजने का अंदाज हमें बहुत ही अच्छा लगा. And Chalik, I just want to dedicate the next one. Best friend Chitra ke liye. Chitra actually Mauritius mein hai, holidays pe hai. We are just having an awesome day together. That's a good. Doston ke saath achhe waqt bitana kaafi acha hota hai, memorable hota hai. You've got your mobile in your hand, just click some pictures, honey, and keep it as a memory. Kyunki ye waqt dobara laut ke wapas nahi aayega. Wo Canada se hai and well, soon I will join her. Aapka holiday shuru hoga ek mahine ke baad. So thank you so much. Enjoy and happy holidays, guys. And Priya Darshini, aapki beti Deshna, who just came from Canada. Lagta hai Canada wale log na Mauritius ko bahut hi zyada pasand karte hain. Aajkal sabhi log Canada se aaye hue hain. Very upset hai. Kya hua? Angry with you? Are manao na usko. I just want to tell her I really love her. To aap bata dijiye na unko, jadu ki jappi dijiye. Aur beta, apne bacche ko bata dena ki aap unse kitna pyar karte hain. बच्चे नाराज हो जाते हैं तो हम जो माँ बाप होते हैं उनको मनाने में पीछे नहीं रह सकते हैं. आपको तो पता है कि चारों की जप्पी कैसे देने ना, और माँ के प्यार में इतना ताकत, इतनी ताकत होती है कि वो मान ही जाएगी. आई एम प्रीटी मच शो एंड वी ऑल लव हर वेरी मच एंड आई जस्ट वांट टू सी हर हैप्पी. ऑफ कोर्स सबका एम तो ये ही होता है प्रिया दर्शिनी, कि हम अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने दें एंड वी प्रे कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें. सो आपकी जो प्यारी सी बेटी है दिशना, अगर आप हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है तो प्लीज मम्मा के लिए मुस्कुरा दीजिए ना. तो चलिए जी, बाकी जो लिसनर्स हमें मैसेजेस भेज रहे हैं थोड़ी देर बाद जरूर चेक करेंगे. फिलहाल के लिए खेल लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड देन द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: L'hiver a pécosté, mais côte métrique, c'est ban prix qui peut faire frissonner. Avec Winterstell, prix crasé. Jusqu'à les 30 juin, 40% réduction, l'ON grand sélection produit. Lavabo, collage, sanitaire et robinetterie, juste pour un l'hiver plus confortable. Métrique, une enseigne du groupe KRMJ.
3: Tu aimes jouer au foot?
4: Tu es dans un club où tu as des amis avec lesquels tu peux former une équipe d'au moins 10 joueurs?
3: Tu es dans la catégorie U13?
4: Alors inscris ton équipe U13 vite pour le tournoi Les Petits Champions organisé par Redor le samedi 4 juillet au terrain de foot de la MFA à Trianon. Pour l'inscription et les conditions de participation, dis à tes parents ou à ton coach de se rendre sur la page Facebook de Dor.
3: Attention, seules les 16 premières équipes inscrites pourront participer au tournoi Les Petits Champions de Dor.
4: Le samedi 4 juillet de 8h30 à 14h sur le terrain de foot de la MFA
3: à Trianon. Viens te battre pour tenter de lever la coupe de la victoire
4: et remporter des cadeaux.
3: Udo, le super-héros de tous nos plats.
4: Conditions applicables.
5: Histoire gagnante du loto. 11 mars 2026, ticket gagnant 16,8 millions, Goodlands.
6: Au fait, c'est bonne date d'anniversaire. C'est bonne date là qui m'a choisi. Moi, je commence à trembler. Moi, je suis content, moi, je commence à trembler. Mais là, tout de suite, moi, des trois fois, mon père a guetté mon numéro labo. Donc, on le sème ça. Après, la montée fait mon marché.
5: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouer responsablement.
2: FM2.
7: Radio Musti.

कहां तक पहुंचे हमारे प्यारे प्यारे लवली लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं वाइल ड्राइविंग एंड टू ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस, आपको भी हमारा बहुत बहुत प्यार हम भेज रहे हैं थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने. सभी गायकों सोल कंडक्टर्स एज वेल जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. तो चलिए माय डियर एंड लवली म्यूजिक लवर्स जो साथ दे रहे हैं, रेडियो होप अच्छा लग रहा है आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन एंड टू ऑल दोस हू आर वर्किंग बोको आज टू यू. आई नो मन तो नहीं करता कि शाम के वक्त ऐसे हम काम करें, हमारा भी मन तो करता होगा कि हम जल्दी जल्दी घर चले, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ता है. एंड फिलहाल के लिए आपका योर डेडिकेशंस ऑन 5499-1294 पर. And here we go, let's read it together. And chaliye ji, I do have the next one jo hum dedicate karna chahenge Shweta Hukum ke liye from Bonakar jo saath de rahi hai. And here wo Sayyara movie ka koi gana abhi to humne already here nahi abhi play nahi kiya, thodi der baad zarur koshish karenge to play that for you. Aapke husband Dudu ke liye, Dudu Roshan and from his bubu, kya baat hai, bubu Rani and Dudu Roshan ji dono saath de rahi hai. And I just want to tell him that I really love him so much. That's so sweet. And chaliye ये जी हस्बैंड जी, वो आपसे बेइंतहा प्यार करती हैं, वो बस इतना ही कहना चाहती हैं आपको. एंड अक्षय सिचन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सती जो अगला गाना आपके लिए डेडिकेट करना पसंद कर रही हैं. शी इज फ्रॉम रिविया जुरांपा. सो चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, किसी ने बोला है नाइस प्रोग्राम ऑन रेडियो मस्ती. एंड अगला गाना जो है डेडिकेट करना चाहेंगे यालेश शाम के लिए सुरिनाम से और उनके परिवार वालों के लिए, माधवी फ्रॉम पोस्ट द फ्लैग, आपके लविंग हस्बैंड आशीष के लिए बेटा आरव, दैट्स अर्नव, आपकी बहन मालिनी, एंड शी इज ऑलवेज लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. ऑफ कोर्स यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग 24 घंटे हमारा साथ देते रहते हैं. मरु परिवार के लिए ऑफ पोस्ट द फ्लैग, एंड मुरुगान परिवार ऑफ पुद्रो दो विलेज. एंड आई हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू स्वीट बेबी अर्शद. सो अगला गाना स्पेशली फॉर यू एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस फॉर यू, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट समवन रियली केयर्स अबाउट यू एंड रियली लव्स यू. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम बेबी रेबिका की तरफ से. हे विनाज अगिसाजी फ्रॉम बेलव्यू मोरेल, सुंदर सा गाना सभी दोस्तों के लिए, परिवार वालों के लिए, हमारे लिए और रेडियो मस्ती है जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी. कुमार दीपचंद जी एंजॉइंग द शो एंड जॉगिंग कर रहे हैं फुल ऑन वॉल्यूम लगा के. सो थैंक यू सो सो मच. अगला गाना आपके लवली पापा शाम के लिए दीपचंद जी, प्यार ब्याह से साथ दे रहे हैं. यू जस्ट वांट टू से आई लव यू पापा एवरी डे मोर एंड मोर, दैट्स सो स्वीट, सो टच एंड सो इमोशनल. सो ड्राइवर अश्मीर के लिए ये अगला गाना है, दैट्स अ लवली मैसेज कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम बच्चन द कंडक्टर हु इज लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट राइट नाउ. 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बिल्कुल जी, फैशन टिप्स तो हम रोज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर एम2 रेडियो में से, चाहे लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए। रोज हम वन वन करके ही आपको टिप्स दे ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है कितना मुश्किल होता है सोचना कि क्या पहने, कैसे दिखेंगे, पता नहीं। ये सारी टेंशन आप दूर भगा दीजिए, क्योंकि ऑन आवर एम2 रेडियो में से वी हैव योर फैशन टिप्स एवरी आफ्टरनून। तो चलिए, कैजुअल विंटर इवनिंग वेयर के टिप्स के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। अगर विंटर के इवनिंग में कैजुअल और स्टाइलिश दिखना है तो कम्फर्ट और लेयरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है मेरी जान, यानी कि वुमेन्स के लिए। आज वुमेन की बात करेंगे। टर्टल नेक का स्वेटर से उसके ऊपर एक स्टाइलिश ब्लेजर या लॉन्ग कोट आप पहन सकते हो, और डार्क जीन्स या टेलर पैंट्स विंटर इवनिंग्स के लिए परफेक्ट होते हैं। एंकल बूट्स आउटफिट को क्लासी लुक देते हैं। कलर्स जैसे कैमल होते हैं, क्रीम बर्गंडी, नेवी या चॉकोल विंटर वाइब्स क्रिएट करते हैं, और एक कोजी वूल स्कार्फ जो है और मिनिमल ज्वेलरी लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। सो वेल, आउटफिट आइडिया यानी कि क्रीम टर्टल नेक, डार्क ब्लू जीन्स।

0: कैमल कोट ब्लैक एंकल बूट्स क्या ख्याल है आपका यू गोना लुक रियली क्लासी
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स

0: program to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सूखे और कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति चिंता का विषय बन गई है। मुख्य जलाशय मोवाक्वा केवल 43% क्षमता पर है। स्थिति से निपटने के लिए CWA पानी के टैंकर, वाल्व प्रबंधन और सुदृढ़ कॉल सेंटर के माध्यम से जलापूर्ति बनाए रखने में जुटी है। लक्ष्य, उपभोक्ताओं की जरूरतों को सुनते हुए उपलब्ध पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है। आज राष्ट्रसभा में विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर हुई PNQ के दौरान मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि EDB ने नई और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए दोबारा टेंडर जारी किया है। साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आकलन के लिए ILO से तकनीकी सहायता ली जा रही है। भोपाल में 2015 के 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। इसी कड़ी में इस वर्ष के 6ठे संस्करण का सम्मान पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए दिया गया। और विदेश में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 2 में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश अब समाचार विस्तार से। सूखे की अवधि में देश के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। द्वीप का मुख्य जलाशय मोवाक्वा अपनी क्षमता का केवल 43% ही भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति और लंबे समय से बारिश न होने के कारण CWA जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, वाल्व का प्रबंधन हो या कॉल सेंटर को मजबूत करना, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टीमें हर मोर्चे पर जुटी हुई हैं। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बात सुनना और इस संसाधन का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित करना है। हमारी टीम कल प्लेन विलियम्स गई थी, जो वर्तमान प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अब्दुल्ला की करुणा लालू।
4: 43% ये मोवाक्वा का वर्तमान जल स्तर है। ये स्तर चिंताजनक है, जो पिछले कई महीनों से वर्षा की कमी को दर्शाता है और पेयजल वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव डाल रहा है। प्लेन विलियम्स में स्थिति खास रूप से कठिन है। कई इलाकों में निवासियों को रोज केवल 5 से 6 घंटे ही पानी सप्लाई की जा रही है। ओकुले में हमने CWA की एक टीम का अनुसरण किया, जो निवासियों की सहायता के लिए तैनात हैं।

0: Mais le goût donne dans DJ. Mais comment vous avez un tank en bas? Pourquoi vous avez là-haut?
1: Moi, j'ai un tank en bas et un tank là-haut. Moi, j'ai la pompe. Alors, comme il y a le goût, nous servons un peu de l'eau la pluie.
2: Maman, tu fais une request pour tout le monde qui a un tank là-haut, n'existe pas en bas. Même si je suis un tank plein, je vais mettre la pompe pour pli. Sinon, si tu as un tank, tu vas jouer avec la même.
3: Ispani qui tanki ke chalak ke liye karya divas lagatar lambe hote ja rahe hain.
2: Moi, j'ai la marie, moi, plein, il fait le débat là. Moi, plein, moi, passé, moi, revine là, moi, donne la case pour la case.
4: Combien de voyages par jour là?
2: Ça y est, 7-8 voyages, il est bon.
5: Le supply là-haut, là, après des réservoirs de 20 niveaux.
6: Oui.
5: Mais là, nous sommes capables, supply.
3: थोड़ा आगे उटन में CWA की तकनीकी टीमें वाल्वों का संचालन कर रही हैं ताकि जल का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
7: रिजर्वर फर्मे ओके लालू पे जब फर्मन वाल ले बावे डुलोमन एपरपोर्ट्स लातामन एपरपोर्ट्स फिंगे डुलोमन लालू फर्मन ऑपरेशन वाल ओको लालू अबे मन डुलोमन नो एपरपोर्ट्स लाला सिस्टम के फर्मन एक्सरसाइज पे शूट सोना
3: इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण कड़ी CWA का कॉल सेंटर है। इस कक्ष में एजेंट लगातार शिकायतों, हस्तक्षेप मांगों और जलापूर्ति संबंधी मांगों का निपटारा कर रहे हैं। सौंधरा शॉल ने कहा, ग्राहकों को सुनते हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिकायत क्या है। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए CWA ने अपनी सभी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा है। सुनील गोपाल ने कहा, 5 से 6 घंटे पानी देने का ये जो उपाय किया गया है, यदि इसे ठीक से प्रबंधित कर सकें, स्थिति में स्थिरता ला सकें, तो कुछ राहत होगी। वर्तमान में 43% जल स्तर में 15% कीचड़ है। ये जल भंडार सितंबर महीने तक के लिए है। अधिकारियों ने सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है। बचाया गया हर लीटर पानी जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश महोबाक्वा जलाशय को फिर से नहीं भर देती, तब तक पानी का प्रबंधन मॉरिशस के हजारों परिवारों के लिए एक दैनिक चुनौती बनी रहेगी।
8: आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के केंद्र में विदेशी श्रमिकों की भर्ती का मुद्दा रहा। मंत्री रेजा उतिम ने घोषणा की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विदेशी श्रम शक्ति की भर्ती के लिए एक सरल, पारदर्शी और आधुनिक प्रणाली स्थापित करने हेतु नया टेंडर जारी किया गया है। एक पिछला प्रयास विफल रहा था। रेजा उतिम ने यह भी घोषणा की कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की भर्ती के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सहायता मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि भर्ती परमिट प्राप्त करने के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद PNQ सत्र को कुछ मिनटों के लिए स्थगित कर दिया गया था। कृतज्ञ फागा देवादू करुणा लालू।
3: मॉरिशस कुछ सेक्टरों में श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कामगारों को भर्ती करने के लिए तैयार है। देश में अभी लगभग 50,000 विदेशी कर्मचारी हैं। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि इन कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय कामगारों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को विदेश की ओर रुख करने से पहले मॉरिशनों की भर्ती एवं ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
9: Can the honorable minister inform the house whether government has a long-term?
3: विपक्ष नेता ने पूछा, क्या श्रम शक्ति में मिसमैच को पाटने के लिए एक दीर्घकालिक स्ट्रेटजी है?
10: There's a series of measures that has been identified which will take effect to
3: श्रम मंत्री ने कहा, कई उपाय देखे गए हैं जिससे स्किल्स मिसमैच की समस्या से निपटा जाए। HRDC के माध्यम से ट्रेनिंग में भारी निवेश और स्किल मिसमैच के शिनाख्त के लिए नए सॉफ्टवेयर का विकास इनमें शामिल है। अब ये नियम स्पष्ट हैं, यदि आप ये दिखाएंगे कि स्थानीय स्तर पर भर्ती करने में असमर्थ हैं, तो विदेशी कर्मचारी की अनुमति दी जाएगी। अनुमति की शर्त भी मॉरिशनों की रक्षा के लिए है। अधिकारी गैर कानूनी तरीके से रहने वालों से निपटने के लिए निरीक्षण को और मजबूत करने की भी योजना बना रही हैं। जनवरी 2026 से 428 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
10: My ministry has taken a policy decision that we will not
3: कोई वर्क परमिट जारी नहीं की जाएगी या रिन्यू नहीं की जाएगी यदि एम्प्लॉयर द्वारा कम से कम 90% तक नियमों का पालन न किया जाए।
10: Of the workers who is under his employment and whose work permit has been

0: expired.
1: भर्ती परमिट पाने के निकषों पर अतिरिक्त सवालों के समय सदन में तीखी बहस हुई.
0: Can the honorable minister therefore explain to the house how this company, which has been incorporated on the 22nd October 2025, has been able to submit financial statements for the last 3 years as required in the application form to be able to obtain a recruitment license for foreign labor?
2: There were 54 recruitment licenses. So we came and we put an order. Now, how we determine the financial resources of a company who has just been set up? And how can we not discriminate against a company that has just been set up? The answer is that you provide us with a business plan. All companies which are licensed to recruit foreign workers to work in Mauritius are required to deposit a guarantee of 1 million rupees.
0: Honourable Minister, are you aware that there's a sole director in that company and that that gentleman is only 21 years old? Does he have any experience with regard to recruitment of foreign workers?
2: As a minister, I don't know and I don't get involved in any issue of recruitment licenses. So if the shareholder may be a young person, but if he has a senior official who is going to do the work, what do? I discriminate against our youngster? I tell them, don't invest, don't start a business?
1: Speaker ne budget par charcha phir se shuru karne se pehle kuch minute ke liye satra suspend bhi kar diya.
3: बजट भाषण और पेंशन सुधारों पर लगी रोक अभी भी ट्रेड यूनियनों को एकजुट किए हुए हैं. इस बुधवार नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन और स्टेट एंड ओवन एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मीन्स टेस्टिंग के विकल्प पेश करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. पब्लिक गवर्निंग एक्ट में संशोधन के जरिए प्रस्तावित नए दंडों की भी आलोचना की गई और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला बताया गया. एमएसएम ने आज पोटवी स्थित अपने मुख्यालय में बजट 2026-2027 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. दल के नेता प्रवीण जगनाथ ने बजट के कई कदमों, विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन की नई प्रणाली की आलोचना की. फाहाकुनाई याचना मिश्रा.
4: एमएसएम के सदस्यों की मौजूदगी में पार्टी के नेता प्रवीण जगनाथ ने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने नई पेंशन प्रणाली से संबंधित कदम का कड़ा खंडन किया. प्रवीण जगनाथ ने कहा कि यदि एमएसएम सत्ता में वापस आती हैं, तो 60 साल की उम्र में पेंशन प्रणाली वापस कायम की जाएगी.
5: aussi une question qui reste sans réponse autour de ce qui vient d'arriver.
4: कई सवाल बिन जवाब रह गए हैं. सरकार कह रही है कि मीन्स टेस्ट रोकी जा रही है, लेकिन परिणामों पर कुछ नहीं कहा गया. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी पेंशन प्रणाली कायम की जाएगी. यदि आप 65 साल की उम्र में पेंशन प्राप्त करेंगे, तो क्या जीवन भर आपको उतनी ही रकम मिलेगी? एमएसएम ने सरकार द्वारा शागुस मुद्दे के संचालन के तरीके की भी आलोचना की. अन्य विषयों में बड़ी बजट वाली परियोजनाएं जैसे हब ब्रिज, पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में सुधार तथा खाद्य सामानों और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल हैं.
3: अन्य खबरों में वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी साहित्य और सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था. इसी पहल के तहत प्रत्येक 2 वर्ष में उत्कृष्ट प्रवासी हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है. हिंदी आज विश्व भर में भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान का सशक्त माध्यम बन चुकी है. इस वर्ष इस छोटे संस्करण के अंतर्गत पहली बार के लिए मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ है. इसी क्रम में महात्मा गांधी संस्थान में एक विशेष साहित्यिक समारोह आयोजित किया गया. अशिता रघु.
6: महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित इस समारोह में महात्मा गांधी संस्थान अप्रवासी साहित्य सृजन सम्मान के 6वें संस्करण के अंतर्गत

0: पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए प्रदान किया गया।
1: मुझे लहरों से बातें करनी है, यह मेरी पहली पुस्तक थी तो उसी को मैंने इस सम्मान के लिए प्रस्तावित किया था। इसमें व्यक्ति है जिसने सब कुछ हार दिया है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और वो समुद्र के पास बैठकर लहरों से बातें करता है और उसे यह अनुभव होता है कि वे अपनों से बातें कर रहा है।
0: इस अवसर पर डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को समर्पित वसंत विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। वहीं रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग के तत्वावधान में आयोजित वसंत एवं रिमझिम साहित्यिक प्रतियोगिता 2025 में लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तृतीय स्तर की कविता प्रतियोगिता में तिश्मा देवी जलू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग ली थी जिसका शीर्षक था भारत मॉरिशस मैत्री। भारत हमेशा से मॉरिशस का समर्थन करता आया है और हमेशा मॉरिशस इसके अंतर्गत विकसित ही होता आया है। इस तरह हम भारत से हमेशा मैत्री के संबंध ही रखते हैं।
0: माध्यमिक स्तर पर युवाओं और ड्रग विषय पर निबंध लेखन के लिए प्रिवेश सिंह अलकोई को प्रथम पुरस्कार मिला।
3: मैंने अपना निबंध ड्रग्स और आदि पर लिखा है जो ड्रग्स हमारे युवकों को बहुत प्रभावित कर रहा है। मुझे वसंत प्रतियोगिता के लिए ये पुरस्कार मिला है।
0: वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग पर लिखे गए निबंध के लिए गीतिका देवी प्रसाद को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
4: मैंने अपना निबंध AI पर लिखा था। AI के महत्व और दुरुपयोग के बारे में लिखा था क्योंकि हम AI को अपने जीवन में यूज करते हैं।
0: रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग की प्रमुख ने हिंदी के विकास में साहित्यिक प्रकाशनों और प्रतिभागियों की अहम भूमिका पर जोर दिया।
5: इस वर्ष की एक मॉरिशसीय लेखक को यह आप्रवासी सम्मान प्राप्त हुआ है। यह हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है क्योंकि उनका जब आप कहानी संग्रह पढ़ेंगे और जिस तरह से जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों ने जब निर्णय लिया तो उसमें जो विशेषताएँ पाई इससे दिखता है कि मॉरिशस में भी वह खूबी है। लेखकों में जो प्रतिभा होनी चाहिए वह धीरे धीरे विकसित हो रही है तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है। और इसी के बहाने मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहूंगी कि आप सृजनशील बने, इसी तरह सतत लिखते रहें और एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
0: समारोह के मुख्य अतिथियों में शामिल भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव श्री रंजन कुमार सिंह ने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। साहित्यकारों को सम्मानित करने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले इस आयोजन ने हिंदी के उज्जवल भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। ये पहल न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ रही है।
6: और अब फुटबॉल की बात करते हैं। विश्व कप 2026 ग्रुप एल में क्रोएशिया के खिलाफ अपनी शानदार जीत के बाद इंग्लैंड इस बार लड़खड़ा गई। घाना के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम को विश्व कप के अगले दौर के लिए अपनी आधिकारिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अरविंद बिसेसर।
7: इंग्लैंड के थ्री लायंस को लगा झटका। हार तो नहीं हुई पर गाना के सामने द थ्री लायंस को ड्रॉ मैच से संतुष्ट होना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ धुआंधार शुरुआत थी पर गाना के आगे बेसुरा। गाना के खेल में अनुशासन था। द ब्लैक स्टार्स 90 मिनट और इंजरी टाइम तक भी डटकर इंग्लैंड के अनगिनत प्रयासों को नाकाम करते गए। फॉक्सबोरो में बरसात हो रही थी पर गोलों की बरसात नहीं हुई। इंग्लैंड के मैच में पकड़ मजबूत रही कुछ समय के लिए पर गाना के चट्टान जैसे डिफेंस को पार नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल बनाना मुश्किल था। अंतिम पलों में हैरी केन को कुछ अच्छे मौके मिले पर गेंद पोस्ट से ऊपर उड़ गई। गाना के ब्लैक स्टार्स अंत तक मजबूती से काउंटर अटैक पर काम करते रहे जहां गोलकीपर पिकफोर्ड को पड़ा अपनी टीम को बचाने के लिए। अंतिम नतीजा गाना 0-0। दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं।
6: विश्व कप 2026 ग्रुप ए बी और सी के तीसरे और अंतिम दिन के साथ जारी हैं। आज की शाम बेहद निर्णायक हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं। मेजबान देश मैदान में उतरेंगे जहां कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से, मेक्सिको का

0: का मुकाबला चेक गणराज्य से होगा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राजील के लिए स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मैच जीतना या हारना जैसा है।
1: ग्रुप स्टेज के आखिरी राउंड के मैच आज से शुरू होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैच। मुख्य आकर्षण होगा ग्रुप सी वाला मैच, जहां ब्राजील का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम अपने पहले मैच में ड्रॉ करके दूसरे मैच में जीत हासिल की थी आईजी के खिलाफ। कार्लोस अंसेलोटी की टीम, उनकी किस्मत उनके हाथ में है। ये लोग ग्रुप का पहला स्थान लेना चाहते हैं। विनिशियस जूनियर, मैचिस कुन्हा, ये लोग हैं। नेमा बेंच पर होगा, राफिना चोट के कारण नहीं खेल पाएगा। स्कॉटलैंड से बच के रहना होगा क्योंकि इसमें भी स्टार खिलाड़ी हैं। एक जीत के साथ स्कॉटलैंड के पास 3 अंक हैं, तो ये टीम भी क्वालिफाई हो सकती है। ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। बफाना टीम के खाते में केवल 1 अंक है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास है 3 अंक। एक ड्रॉ सॉन युनमिन की टीम के लिए काफी हो सकता है। ये मैच सुबह 5 बजे आप देख पाएंगे एमबीसी टीवी के स्पोर्ट्स 11 पर। इसी ग्रुप में मेक्सिको की टीम, जो पहले ही अपना टिकट बुक कर चुकी है, उसके सामने है चेक रिपब्लिक। एक जीत के साथ मेक्सिको पहला स्थान ले सकता है। ग्रुप बी में कनाडा और स्विट्जरलैंड के बीच टकराव, ये ग्रुप ए का न्यूमेरो इनो यानी पहला स्थान लेने के लिए। कनाडा की टीम अपनी सरजमीन पर है, अपने फैंस के सामने ये लोग जीतना चाहेंगे और आगे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहेंगे।
0: विदेश की खबरों में ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कारीबाफ का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता किसी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम नहीं था। इसराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना लिबनान से पीछे नहीं हटेगी, भले ही अमेरिका ऐसा करने की मांग करें। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 131 व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया।
2: भारतीय सिनेमा, संगीत और खेल जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को इस वर्ष पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके दीर्घ और उल्लेखनीय योगदान को इस सम्मान के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता दी गई। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय क्रिकेट के प्रमुख चेहरों में शामिल रोहित शर्मा को खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। अभिनेता आर माधवन भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल रहे जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। पद्म अवार्ड्स केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, वे उन व्यक्तियों के लिए भारत की कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने अपने कार्य, प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से समाज, संस्कृति और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इन सम्मानों के जरिए भारत सरकार ये संदेश देती है कि उत्कृष्टता, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान को सर्वोच्च स्तर पर मान्यता दी जाती है।
0: और अब आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल याचना मिश्रा के साथ।
3: मस्करीन्स के दक्षिण दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को आसमान साफ रहेगा, कल सुबह देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा जिस कारण से विजिबिलिटी भी कम होगी। दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा खासकर ऊंचाइयों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियों में 90 साल की श्रीमती देवलतिया लुकमन, पैदाइशी नाम बिरीज और जो बाबुई नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियों से उठाकर प्लेनमानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। ला शापेल ऑडों टेडियनसन्स रोड बोबासे में 97 साल की श्रीमती मुनावती दसरत, पैदाइशी नाम रामफल और जो बिदरा नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे सेविया जिल्लिन स्ट्रीट रेजिडेंस सोकोजी लॉज काट्रोबोन रहती थी। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे ला शापेल ऑडों टेडियनसन्स रोड बोबासे से उठाकर अली ब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2

तो चलिए जी चेक योर टाइम स्टूडियो के घर में 6:34 हो चुके हैं। वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम।

0: बिल्कुल जी, प्यार में तो सौदेबाजी नहीं चलते हैं। प्यार तो बहुत ही खूबसूरत सा फीलिंग होता है मेरी जान। दिल से महसूस आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्यार कितने खूबसूरत है। प्यार वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, प्यार तो वो है जो खामोशी में भी समझ में आ जाए। कभी दूर रहकर भी जो पास लगे, वही तो असली प्यार के एहसास लगते हैं। दिल की हर धड़कन उनसे ही शुरू होती है और उन पे ही जाके बात रुक ही जाती है। ना दिन का पता ना रात की खबर होती है, बस जब वो मिलते हैं ना, वही चारों तरफ नजर आ जाते हैं। प्यार वो है जो आपकी जिंदगी को बदल दे, प्यार वो है जो आपकी बेरंग से जिंदगी में रंग लेकर आए। प्यार बहुत ही प्यारा सा फीलिंग होता है मेरी जान, तभी तो हम लेकर आए हैं प्यार भरे गाने आप लोगों के लिए। हमें पता है कि आप लोग थके हुए हैं, काम से या घर वापस आ गए हैं, पता नहीं आज का दिन आपके लिए कैसा रहा होगा काम पे। इट वॉज हार्ड डे और हार्ड रश डे, कैसा भी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट यू टू सिट बैक, रिलैक्स, टेक अ मोमेंट फॉर यू, ब्रीथ एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल एंड लवली गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ऑन R&2 रेडियो मस्ती।
1: R&2 रेडियो मस्ती।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: बिल्कुल जी, इवनिंग लाउंज यहीं से शुरू होता है आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, स्टूडियो के घर में एग्जैक्टली 7:06 हो चुके हैं। विशिंग एवरीवन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है ऑन रेडियो मस्ती, अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। तबीयत ठीक है, ज़्यादा ठंड तो नहीं लगी है ना? कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने तराने फॉर यू माई लवली पीपल आउट देयर जो साथ देने आए हैं। प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें करेंगे। बिल्कुल जी, अभी थोड़ी देर पहले का सवाल आया है किसी से, किसी ने पूछा कि गिनीशा आप इतने रोमांटिक रोमांटिक गाने लेकर आते हैं, इतने प्यारे प्यारे बातें करते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन ये प्यार जो चीज़ है ना, क्या है? मैंने तो कहा कि प्यार वो है जो बिना बोले समझ में आया और जैसे रेडियो पे धुन सीधा दिल तक आ जाए। कोई पास होता है या दूर होता है फर्क नहीं पड़ता, दिल को बस उनकी फ्रीक्वेंसी पे चलता है। हर पल में उन्हीं की बात होती है। जैसे जिंदगी नहीं एक लव स्टोरी की रात होती है। उनके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए हर धड़कन पर बस उन्हीं का हक चलता है। मेरे ख्याल से यही होता है प्यार। वाला आपको क्या लगता है कि प्यार क्या है? आप हमें बता सकते हैं आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस के जरिए ऑन 5499124 पर 5499294। और थोड़ी देर बाद अगर आपको हमसे लाइव एंड डायरेक्ट बात करनी हो तो ऑफकोर्स योर कॉल्स आर द मोस्ट वेलकम ऑन 402-80-35।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

बिल्कुल जी, प्यार में तो मिलना बहुत ही जरूरी है, शिकायत करने के लिए भी, टाइम स्पेंड करने के लिए भी। Such a beautiful and mesmerizing track in the lovely voice of Kumar Sanu and Alka Yagnik, khas kar aapke liye. Haan ji, humne bhi pyar kiya hai and I'm pretty much sure ki aapne bhi pyar kiya hai. 7:28 minute ho chuke hain. You're listening to Ginisha right now on RM2 Radio Masti. Ji haan dosto, bahut bahut shukriya ji hamara.

0: साथ देने के लिए फॉर ट्यूनिंग इन ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन जहां पे हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे जाकर आपके दिल पर लगने वाले हैं। बिल्कुल जी, और वैसे आज की रात बिल्कुल खास है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं जगहों पे हल्की सी बरसात भी हो रही है और हवा में नमी भी है और थोड़ा सा दिल में प्यार। क्या ख्याल है मेरे जाने तेने प्यारे प्यारे खूबसूरत गानों का सिलेक्शन लेकर आए हैं जिस मेक योर इवनिंग मच मोर ब्यूटीफुल एंड मच मोर थॉटफुल एंड मच मोर सो मच एंड लव। एंड इस खूबसूरत मूड को और भी गहरा करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ रोमांटिक क्लासिक्स आप लोगों के लिए एंड जो सीधा आपके दिल की फ्रीक्वेंसी पर प्ले करेंगे। आई एम प्रीटी मच बिल्कुल एक्चुअली बस यही हम कोशिश करते रहते हैं कि आपका हम साथ दे दें, आपके मनपसंद गानों को प्ले करें और बस आपका दिल खुश कर दें। और आपको याद दिला दें द शो इज लाइव राइट नाउ ऑन टिकटॉक और एम टू रेडियो मस्ती। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया इट्स टिकटॉक पर और एम टू रेडियो मस्ती, फॉलो अस राइट नाउ राइट व्हेन यू गोना बी नोटिफाइड जब भी हम लाइव आएंगे। और अगर हमसे लाइव एंड डायरेक्ट बात करनी हो तो बहुत ही आसान मैजिकल नंबर हम आप तक पहुंचा देते हैं 402-80-35 डाल कीजिए टू टॉक टू गिनीशा लाइव एंड डायरेक्ट। और वैसे भी अगर आपका मन है कुछ ऐसे खूबसूरत गाने सुनने का तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। हेलो जी नमस्ते। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी राजेश जी आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: हाँ जी हम आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, कैसे हो आप?
1: ठीक है।
0: ओह माय गॉड,
1: कहाँ थी आप?
0: अच्छा सब इतने दिनों बाद कहाँ थी आप? पूछे
1: आपने अपने लिसनर को छोड़ दिया
0: इतने मतलब आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप तो मुझे डांट ही रहे हो कि कहाँ थे आप, मैं यहीं पे होती हूँ भाई, मैं दिन में भी काम करती हूँ।
1: वो दिव्या भारती जी बोलती थी उससे भाई बात किया बगैर भाई आपको ढूंढ रही थी।
0: ओहो मेरी जान,
1: कहाँ था?
0: हम तो नहीं, हम तो यहीं पे होते हैं और हम दिन में भी आते हैं। आप मुझे दिन में सुना करो ना, सिर्फ रात को ही क्यों सुनते हो
1: दिन को कहाँ से फोन करूंगा, दिन को काम करूंगा।
0: देखो बहुत ही इजी है ब्रो, बहुत ही इजी है। आप जो हमारा ऐप है ना MBC प्ले 1.0 को डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर आप रेडियो भी सुन पाओगे। जहाँ जहाँ आप जाओगे हम आपके साथ साथ चलेंगे।
1: नहीं जी, मैं तो ये मेरे परिवार भी सुनते हैं ना, आपसे बात करता हूँ तो आप मेरे परिवार भी सुनते हैं और वो मुझे फोन करके बोलते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपसे
0: अच्छा मैं तो देखो कोशिश तो करती रहती हूँ कि मैं सभी से अच्छे से बात करूँ। हाँ, और बाकी उस दिन
1: जो फ्रेंड है वो दिव्या जी, वो भी मेरे मेरे को बहुत बहुत अच्छा सा गीत दिया।
0: फिर भी आपने मुझे मिस किया।
1: दिव्या भारती
0: नहीं,
1: बोलता हूँ।
0: फिर भी आपने मुझे
1: आपको तो मैं
0: आपने फिर भी मुझे मिस किया ना। चलिए उनको तो आप दिव्या भारती बुलाते हो, मुझे क्या बुलाते हो
1: आप? तो आपके मेरे लिए अल्फाज नहीं है क्योंकि आपके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपसे आपके लिसनर्स बहुत चाहते हैं आपसे बात करने के लिए।
0: लेकिन हम अभी हैं ना, अभी आप जी भर के बात कर लीजिए मुझसे, कोई बात
1: तो
0: नहीं। लेकिन मैजिकल नहीं, मैजिकल वर्ड आपने बोले नहीं मुझे जब से हम बात कर रहे हैं।
1: क्या बोला?
0: जो एक्चुअली जब भी आप फोन करते हो जो तीन मैजिकल वर्ड होते हैं।
1: ओह माय गॉड,
0: और मैं आपको एक बार बताऊं यहाँ पे हमारे RN2 रेडियो मस्ती पे किस नाम से आपका नंबर फीड है, राजेश OMG तो बताइए।
1: मैं अपना नाम नहीं बोलता, मैं कहता हूँ ओह माय गॉड। ये वहाँ जो मेरे गांव के लोग हैं सभी जानते हैं ओह माय गॉड राजेश।
0: बिल्कुल जी, सबको पता है कि कौन है। तो बताइए राजेश,
1: चाहता हूँ जी
0: राजेश भाई बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे?
1: फिल्म है दिल है के मानता नहीं और गीत है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और।
0: ओह हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: ओह ओह
0: ठीक है,
1: क्या हंसी, ये हंसी यही तो आप सारे लोगों

0: को जीवन देती है।
1: ओहो
0: माय गॉड,
1: आज तो फिर भी
0: आपको ऐसे ही हंसाते रहिए, ऐसे ही आपको सुरक्षित रहे।
1: थैंक यू सो मच ब्रो, और हम दिल से
0: मैं प्रिय करता हूँ,
1: मैं भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी आपकी तरह हमारे लिसनर्स हैं हमेशा खुश रहें, आप लोगों के दिल की मुरादें सभी पूरी हो जाए और कभी किसी मुसीबत में ना पड़े लाइफ में, बस हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। ठीक है,
0: दुख दुख तो इस बात की थी कि बहुत देर से आप मिले, मगर मिले
1: ना नहीं, दुख भी देखो ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो बोलती हूँ रजेश भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज अगर बारिश है तो कल अच्छा मौसम भी तो आएगा, धूप निकल आएगा, इट्स अ सर्कल एंड दिस इज द सर्कल द नेचर। ओके, लेकिन अगर दुख के वक्त में अगर हम एक दूसरे का सहारा बने और जैसे रेडियो मस्ती आप लोग सुनते हैं और कोई ऐसा गाना हम प्ले करें जो शायद आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए, तो आई थिंक ऐसे ही हम एक दूसरे के दुख बांटते रहते हैं ना।
0: मैं तो रात दिन यहीं इसमें डूबा रहता हूँ।
1: अच्छी बात है, तो चलिए जी ये गाना थोड़ी देर में मैं जरूर प्ले करूंगी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू ब्रो, आपने फोन किया,
0: आपको आपकी आवाज को बुलंदी दी।
1: अरे मेरी
0: आवाज सरस्वती है, सरस्वती।
1: ओहो थैंक यू सो मच, लेकिन अभी गला खराब है। ले रही हूँ भाई, सब कुछ कर रही है, 3 हफ्तों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हम तो यहाँ आ जाते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए।
0: ओके
1: ठीक है,
0: यही तो मैं सुना था आपकी आवाज।
1: चलिए आप सुनेंगे।
0: ओह माय गॉड, क्या आवाज है,
1: चलिए
0: ईश्वर ने क्या आवाज दी आपको।
1: थैंक यू ब्रो, और बस अपना ख्याल रखना,
0: ये सलामत रखना मेरे लिए नहीं, आपके सारे नेचर की। और सुनीता आपसे खुद बात करनी चाहती है। सुनीता तो चेहरे से है, देखना थोड़ा घड़ी में फोन करेगा।
1: ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय एंड ओ माय गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने फोन किया, बस ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे और आपके फैमिली भी हमेशा ऐसे आपका साथ दे। तो चलिए जैसे कि मैंने बोला है कि द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, RM2 रेडियो मस्ती, डू जॉइन अस देयर एंड यू कैन जस्ट लीव योर डेडिकेशंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलिए जी, फोन फिर से बज रहे हैं, अगर नहीं उठाएंगे तो वो फिर कट जाएगा। हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है ऑन रेडियो मस्ती। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे पहले बताइए आपका नाम क्या है।
2: मेरा नाम सरोजा देवी जादू है, मैं सरोजा रहती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, और सब कुछ ठीक है, डिनर खा लिया आपने, खाना खा लिया,
2: चल रहा है,
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। चलिए बताइए गाना किसके लिए।
2: मेरे बच्चे गणेश का, मेरे ग्रांड डॉटर कंसर, उसके लिए।
1: ओके जी, चलिए जी,
2: एक गीत मैं मांग सकती हूँ।
1: कौन सा गाना।
2: अगर बदले यहाँ माली चहर न होता नहीं कर पहाड़े फिर भी आती है, पहाड़े फिर भी आएगी। ये मैं मांग रही।
1: कौन से मूवी का गाना है। लगता है कि क्रेडिट जो है खत्म हो गया, कोई बात नहीं जी, शेयर जरूर प्ले करेंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे सभी प्यार करने वालों के नाम। ये है अनुराधा पोरवार और बबला मेहता की आवाज़ों में, टेकन फ्रॉम द मूवी दिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल जी, 12 दोस्त वॉट रियली मैडली डीपली लव। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में तो हो सकते हैं लेकिन आपकी किस्मत में नहीं, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ के रब से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो किसी को लेकर आता है तो बिल्कुल वो आपकी किस्मत में भी उनको ज़रूर लिख दे, वरना दुख बहुत लगता है, होता है ना।

ब्यूटीफुल एंड मस्मराइजिंग ट्रैक है जी हाँ दोस्तों लेकर आई हैं दैट वाज इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ मोहम्मद फैज। एक ऐसा गाना जो बस बहुत सारे लोगों का फेवरेट है जो हमें बता रहे हैं ऑन टिकटॉक और एमटी रेडियो मस्ती जहां पे हम लाइव हैं। बिल्कुल जी, जब भी दिल पे हल्की सी धड़कन तेज हो जाती है ना, वैसे आपको समझ में तो आ जाना चाहिए कि प्यार हो रहा है या याद किसी के बड़े जोरों की आ रही है। और उसी एहसास के साथ ये गाना जो हर

0: प्यार को जिंदा कर देते हैं हम लेकर आते हैं के बाद एक वैसे गाने कुछ ऐसे हम गिने चुने लेकर आते हैं जो बस हो सकता है शायद आपका भी फेवरेट हो एंड आई रियली होप कि आपका मनपसंद गाना हमारे आज लिस्ट में है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना जब जिंदगी में आता है तो एक छाप छोड़ देते हैं और अगर उस इंसान के साथ आपने एक ऐसा वक्त बिताया होगा जो एक गाने के साथ शायद कुछ मेमोरीज आपने क्रिएट की होगी तो बस याद उसी की आ जाती है जब भी वो गाना सुनते हैं क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं ऐसे आते हैं जैसे रेडियो पे परफेक्ट सिग्नल मिल जाए ना कोई नॉइज ना कोई डिस्टॉर्शन बस क्लैरिटी है और जब प्यार में इंसान को क्लैरिटी मिलते हैं तो एक ऐसा सुकून मिलता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होता है प्यार में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उस रिश्ते में कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का और कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप उनसे पूछते हैं कि यू नो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ प्लीज़ बैठ के कुछ बातें करते हैं एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट कि पता तो चले कि वेयर आर यू स्टैंडिंग इन योर लाइफ उस इंसान को लेकर तो सामने वाला अगर उसके मन में आपके लिए प्यार है और वो भी सच्चा वाला प्यार एंड ही ऑल्सो या शी ऑल्सो वॉन्ट क्लैरिटी एंड शी ऑल्सो want everything to be so perfect and वो इंसान जो है अगर आपके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं एंड अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं कि यू गाइस आर टुगेदर इन द फ्यूचर एंड ही इज़ पिक्चराइजिंग दैट पिक्चर तो वो बैठ के आपसे दो शब्द ज़रूर बोलेंगे और अगर उसको खुद नहीं पता कि लाइफ में उसको क्या चाहिए या बस ऐसे तफरीक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ जैसे बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली वो इंसान आपसे बात करने के बजाय बोलेंगे अरे तुम तो हमेशा आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहते हो या ऑलवेज आर्ग्यूइंग लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आर्ग्यूमेंट नहीं है दिस इज़ व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज द की एंड व्हेनेवर यू कम्युनिकेट यू गेट क्लैरिटी है ना वेल ऐसे बातें तो हम करते ही रहते हैं लेकिन फिलहाल के लिए चलिए जी लेट्स चेक आउट योर डेडिकेशंस ऑन 5499194 पर एंड चलिए अभी पहले फोन आ रहा है किसी का हेलो जी सुनीता जी आपका स्वागत है कैसे हो आप
1: जी नमस्ते गिनेशा
0: नमस्ते जी आपका स्वागत है ऑन रेडियो मस्ते आप ठीक हो
1: क्या मैं ठीक हूँ
0: मैं ठीक हूँ बस गला थोड़ा सा खराब है आपको पता है क्या मौसम बदल गया है इसलिए लगता है कि आपका भी क्रेडिट खत्म कोई बात नहीं है सुनीता जी के लिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे एंड आई हैव बेटी डिया के लिए उनके पापा दीपक की तरफ से और आई जस्ट वांट टू विश यू एंड योर टीम बोन कोराज गिनी एंड कीप योरसेल्फ वेल कवर्ड इन दिस कोल्ड वेदर हाँ जी आपको भी लगा ना कि गाना खराब है तब भी बोल रहे हो तो आपके नीस का जन्मदिन है तो हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड हैप्पी बर्थडे टू थर्शिनी एंड थर्शिनी जो है 8 साल की हो गई हैं सो बेस्ट विशेज एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अजय और उनकी मामा जो फोंजिसा के रहने वाली हैं और कीर्ति पुमेश दुर्वंश जेवियन एंड काजल जीतन ऑफ लावेंचर से उनकी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू माय डियर एंड एक गाना हो जाए आपके लिए कौन है ये हमारी प्यारी सी रोशनी रोशनी जी थोड़ी देर में जरूर कोशिश करेंगे टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू एंड हियर वी गो अभी के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सा गाना उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में आप लोगों के लिए इन योर इवनिंग लाउंज Happening right now on
2: RM2 Radio Masti.

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलेक्शन तो बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, रात के एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं।
1: ऑन टू रेडियो मस्ती, द टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय मैकडॉनल्ड्स।
2: मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट।
1: एंड आरकेजी क्लासिक प्योर काऊ घी, शेयर द टेस्ट, शेयर हैप्पीनेस।
3: रेडियो मस्ती
4: नॉर्थ South
3: 103.5,
4: East West
3: 96.4,
4: Center
3: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Evening Lounge.
7: Evening Lounge.
5: RM2
6: Radio Musti.

टाइम बीता चला जा रहा है और फिलहाल के लिए 8:06 भी हो चुके हैं. सो वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर इवनिंग लाउंज हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग काफिराना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में. कहते हैं कुछ रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि कुछ रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते हैं, वो बस हो जाते हैं. जैसे ये गाना जो अभी अभी हमने आपको सुनाया ऑन रेडियो मस्ती, जो दिल को क्वाइटली पकड़ ही लेता है और कब्जा कर लेते हैं आप लोगों के दिल पर. कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस मन करता है कि सुनते जाएं सुनते जाएं. और ऐसे कुछ और गाने हम लेकर आए हैं इस और एक घंटे के सफर में 9 तक. आल भी है आपका साथ देने के लिए. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक और इनटू रेडियो मस्ती एंड टू ऑल दोस हु आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो एंड टू ऑल दोस हु आर सेंडिंग मी मैसेजेस ऑन 5499124 पर. तो चलिए जी, योर डेडिकेशंस आर द मोस्ट वेलकम एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन. पापा अमित के लिए सुहावन, मामा अंजू, बहन आयशा और नाना रंजीत सी तारम के लिए जो रूनियन आइलैंड नॉरूनियन आइलैंड में नहीं रूनियन मोरेल में रहते हैं. मैंने सीधा उनको पहुंचा दिया रूनियन आइलैंड, सॉरी रूनियन मोरेल में रहते हैं. और नानी प्रतिमा, भाई तनव, सुरू एंड निदेश एंड जीबन फ्रॉम डियान सुहावन ऑफ पेटर अफ्रे से जो साथ दे रहे हैं उनकी तरफ से. एंड थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग. अच्छा काफी राना आपको भी अच्छा लगता है. प्रकाश श्रुति जी फ्रॉम बेल्जियम, थैंक यू सो मच. आप सुन रहे हो, अच्छा लगा जानकर आपने मैसेज भी भेजा. ये नाइस सिलेक्शन की नहीं आना बर्थडे वाला गाना मेरा बेटा जो है विकार शनलोर के लिए. आज उनका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेज उनके मामा मानवी, उनके पापा विकास और उनका जो भाई है विहान, उनकी तरफ से लॉट्स ऑफ लव. एंड चलिए जी, वी डू हैव ये अगला गाना सभी लोगों के लिए एंड आपके दोस्त सुरीना पलवान के लिए. दैट्स कमिंग फ्रॉम सबीता, हंसिनी, लतीका एंड रितिशा एंड वी अप्रिशिएट हर लॉट्स ऑफ काइंडनेस. थैंक यू सो सो मच. वैसे काइंडनेस तो चाहिए ही चाहिए. एंड अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली सभी लोगों के लिए जो साथ दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा. यू डिडंट इवन साइन योर मैसेज, कोई बात नहीं. बट फॉर यू सुरेखा जो साथ दे रहे हैं, उनकी बेटी वर्षा के लिए भी ये अगला गाना. एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंसेस रबीहा चुलन जो रोडरिक्स आइलैंड में रहती है. दारांश्वेता रविश, प्रीशा एंड लवेश, प्रीशा एंड लवेश

culture. Elle n'a pas de famille, ce qui te refait, je suis from Rochno. Tout ce lié, je thank you so much. C'est ça, Déterena Jaya Chakouri qui est lié, and she's watching us live on TikTok, RM2 Radio Masti. Pritmaji, Nishal, Rekha, Sabrine, Vinesan, for you, and we have Tazu, we have Gaurav, and Nirav qui est lié. And the next one goes out to Vikash, and... चलिए जी टू ऑल दोस जो साथ निभा रहे हैं एंड हियर वी गो आई जस्ट वांट यू टू सिट बैक एंड एंजॉय द नेक्स्ट वन जो बहुत ही प्यारा सा गाना है और आपके लिए हम लेकर आए हैं टेकन फ्रॉम द मूवी रास

स्टूडियो की घड़ी में 8:22 हो चुके हैं. यस, यू आर लिसनिंग टू किनेशा राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. देन दैट्स योर इवनिंग लाउंज, जहां पे हम लेकर आते हैं बहुत ही कुछ ऐसे गाने जो बस आप लोगों को खुशी मिले, आप लोगों को एहसास दिलाए कि प्यार कितना ज़रूरी होता है. वैसे अगर आप किसी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहे हो और अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो और बस समझ लीजिए कि अब लाइफ प्लेलिस्ट चेंजेस हो चुकी हैं आपकी. है बिल्कुल आपकी प्लेलिस्ट में अगर हमारे ये गाने बिल्कुल फिट आ रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग इट, सो मतलब कि बिल्कुल जी आपको भी किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका है. एंड हम तो बस इतना कहेंगे वेलकम ऑन बोर्ड इन आवर शो ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पे हम प्यार बांटते चले जाते हैं. बिल्कुल जी, टू ऑल दोस हु आर वर्किंग राइट नाउ, कीप ऑन वर्किंग एंड साथ साथ में हमारा साथ देते रहना एंड कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एंड साथ में बोको हाश टू यू. बिल्कुल हम भी तो काम कर रहे हैं आपका साथ देने के लिए. एंड टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली बाबा, आराम से गाड़ी चलाना. वी डू हैव पूजा मोहन, कृष मोहन, वी हैव शिव एंड यानी कि शिवेश बोला भी हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेज माई ब्यूटिफुल फैमिली. एंड विक्रम पाठक, वी हैव जिया, वी हैव विनिटी, आपके हस्बैंड विकास के लिए अगला गाना. एंड सभापति रावण जी, हाय, बिग हाय गोज टू यू. हस्बैंड रक्ष के लिए एंड सबरीन, ये अगला गाना आपके लिए. और नील के लिए जया चकोरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट द नेक्स्ट वन फॉर यू. एंड एस के सी, हाँ, बट द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. एंड थैंक यू सो सो मच जो साथ दे रहे हैं राइट नाउ. आपके मैसेजेस पढ़ते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है, सॉरी अबाउट दैट. तो चलिए गिनीशा जी, हाँ जी, ऑन 5499124 पर आपने भेजा मैसेज. आई ट्रस्ट यू एंड योर फैमिली वेल, बिल्कुल ठीक है. बच्चों के लिए ट्विंस रेवंश एंड रेयांश के लिए फ्रॉम मॉम वंश वशिनी की तरफ से डैड विजय एंड ग्रैंड मा विदा एंड दे आर फ्रॉम हाइलैंड्स साथ दे रहे हैं. अंदर चलिए जी, प्रणाम आपको भी. लवली इवनिंग टू यू, एंजॉइंग द सॉन्ग. काइंडनेस इज द लैंग्वेज विच द डेफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी. ओके माई स्वीट हार्ट, बिल्कुल माई मीठ हार्ट एंड दैट स्काईट्री, जो हमेशा ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें लिख के हमें भेजते हैं. एंड हाई माई स्वीट किनू, हे माई डार्लिंग, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है. तखन श्वेता रविश प्रीशा लविश, thank you so much about your families for always being there and listening to RM2 Radio Masti. So, chaliye ji, we have Dave Krishan.

थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली मैसेज. और फिलहाल के लिए चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक. राहत फतेह अली खान की आवाज में, जिसे सुनते ही दिल को राहत मिल जाती है, उनकी आवाज सुनते ही हमारे दिल को भी सुकून मिलते हैं. सानू एक पल चैन न आवे, क्या करे कमबख्त, चैन तो उसने चुरा लिया हमारा. हम गाने से काम चलाएंगे अब.

बिल्कुल जी, ऐसा इंसान जब हम आपको मिल जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी वही है जिसकी आपको ज़रूरत थी, वही है जिनकी तलाश थी, वही है जिनका इंतज़ार था इतने टाइम से। और जब वो इंसान मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया पूरी हो गई है। उनसे बात करने का मन करता है, उनके साथ वक्त बिताने का बिल्कुल मन करता ही रहता है। और इस खूबसूरत एहसास का नाम सबने दिया है प्यार, प्यार इश्क और मोहब्बत। वैसे कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं रोशनी बनकर, कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं रोशनी बनकर और छोड़ जाते हैं सिर्फ अंधेरा समझाकर। बिल्कुल जी, मानो या ना मानो, कुछ लोग काफ़ी अनलकी होते हैं प्यार में और कुछ लोग लकी होते हैं जिनको जिनका प्यार मिला। हम तो बस रब से यही दुआ करेंगे कि हमेशा आप दोनों का प्यार सलामत रहे, किसी की नज़र ना लगे। और जिनको नहीं मिला, अगर अभी भी आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उनको मिस करते हो, आई नो दिस फीलिंग कि आप उनको शायद कितना मिस करते होंगे कि आप अभी भी हमारे लाइफ को देखते हुए ऑन पावर एम टू रेडियो मस्ती ऑन टिकटॉक उनको याद करके उनके लिए गाने की फरमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है प्यार के इस राह में, जब चलते चलते जब इंसान का दिल टूट जाता है। वैसे कभी कभी हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते हैं और बस यादें रह जाती हैं जो रात भर जगाते रखते हैं, आपको जगाए रखते हैं, उनकी यादें, उनको याद करते करते बस आपकी ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन प्यार नहीं मिलता, प्यार रुकता नहीं, बस इंसान थक जाता है। हमेशा याद रखना, इंतज़ार करते करते खुद को खो देता है इंसान प्यार में। कुछ प्यार पूरे नहीं होते हैं, मानो या ना मानो, कुछ प्यार पूरे नहीं होते हैं, पर वो दिल में हमेशा के लिए बचते रहते हैं। जैसे पुराना रेडियो का गाना जब बजते हैं और उनकी याद आ जाती है। हम तो बस यही जानते हैं कि

0: जब कोई आपकी जिंदगी में आके चला जाता है ना, उनकी याद इतनी सताती है कि कहीं भी जाए, जहां भी जाए, उनकी याद साथ रहती है और कुछ नहीं।
1: RM2 Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। और वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से वापस उसी जगह पर जहां पर गाने ही गाने होते हैं, इमोशंस और यादें। तो चलिए, इनके साथ वक्त गुजारने का हमने वादा कर लिया तो निभाएंगे। आपका साथ है तो एक के बाद एक सुपर हिट गाने ही चलाएंगे। साथ देते जाइए लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर।

भाई हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कोई ना कोई तो पल होता है जो परफेक्ट ही लगता है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, तभी ये मैथमेटिकल नहीं है, ये मैजिकल है। कभी कभी ऐसी चीजों को दिल में बसा के रखिए और याद करके क्यों ना हम ऐसे ही मुस्कुराएं। म्यूजिक का साथ है तो चलिए चलते जाएं।

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: भाई, अगर बात करें सबसे बड़े नेटवर्क की तो वो होता है फैमिली नेटवर्क। फैमिली के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल ही जिंदगी के अनमोल हीरे होते हैं, एक ट्रेजर होता है। आज रात उन यादों को एक म्यूजिकल सलूट उन कंपोजर्स को, इन सिंगर्स को जिन्होंने इन गानों को ये रूप दिया और ऐसा रूप देकर हमारे जिंदगी के मेमोरी कार्ड में सेव कर दिया।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: सच मानिए कि जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो उसमें कोई बॉलीवुड का गाना तो फिट हो ही जाता है। आपकी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक अगर होता तो कौन सा होता, सोचिए सोचिए और उस गाने को क्यों ना थोड़ा सा याद करके फिर से गुनगुनाएं। अपनी जिंदगी में वो ऊर्जा एक बार फिर से वापस लेकर आए, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन और जिंदगी को भरपूर जीने का एक फैसला अगर कर सकते हैं तो आप ही।

जिंदगी में न जाने कितने सारे पल आते हैं, कभी जीत का पैगाम लेकर और कभी हार भी तो मिलती है। लेकिन जिंदगी ये सिखाती है कि हर बारी जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें जीना सिखाता है, जीतना सिखाता है। और आगे बढ़कर उस सबक के साथ न जाने कितनी सारी मंजिलें हम ढूंढ पाएंगे। अगर आज का दिन मुश्किल था तो कल का दिन नया मौका लेकर आएगा। ऐसे ही जिंदगी का चैप्टर यूं ही हर दिन बदलता जाएगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: एक जिंदगी है और एक सफर। इस जिंदगी के अंदर हर दिन कोशिश कीजिए कुछ नया करने का। वैसे सोचिए कि आपने लास्ट टाइम अपनी खुशी के लिए क्या किया था, यानी कि आपने अपनी खुशी के लिए आखिरी बार क्या किया था, याद कीजिए और खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। हर दिन एक स्ट्रगल है, लेकिन साथ साथ में सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। कहते हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: भाई लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, कभी कभी अपने काम से प्यार, कभी अपने सपनों से भी प्यार, और कभी खुद से भी प्यार करना बहुत जरूरी है। जब ये पॉजिटिविटी, ये जो पावर है प्यार की, हमेशा चारों तरफ रहती है ना, तो मंजिल

कहते हैं कि जो मुस्कान है ना चेहरे पर जो होती है वो फ्री में आती है, फ्री है ना, बिल्कुल सही, लेकिन उसको अपने चेहरे पर लगा लेना, सजा लेना, ये काफी कठिन है। जो लोग रोज मुस्कुराकर सबका हौसला बढ़ाते हैं उनके लिए भी हम करते हैं एक सल्यूट। ये वो लोग हैं जो अपने साथ ये खुशियां लेकर आते हैं लेकिन अपने तक सीमित नहीं रखते। तो क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे जिसके आने से पॉजिटिविटी फैल जाए, किसी को गम भी हो आपकी खुशी में वो गम भूल जाए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हाँ, वो कहते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर आज कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो कल आपको एक मौका जिंदगी जरूर देगी। 24 घंटे एक बार फिर से आपके साथ। एक और दिन जहाँ खत्म होने को है तो वहीं पर एक प्रॉमिस जो कल सुबह सूरज के साथ उगने को है। अगर आज आपने सिर्फ इतना किया कि हिम्मत नहीं हारी तो यकीन मानिए आप जीत गए।

0: time to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: A big hello to all the music lovers. और इस म्यूजिक दुनिया में सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम सब संगीत के साथ जुड़े हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह लोकेलिटी से, और सबसे कमाल की बात कि अगर म्यूजिक हम सबको साथ लेकर आता है तो वो कामनेस, वो खुशी भरपूर देता है। ना उम्र देखता है, ना शहर, ना जुबान, सिर्फ दिल से दिल तक का सफर।

कुछ छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे किसी को सॉरी कह देना, आप गलत हैं ये मान लेना, या फिर किसी को थैंक यू कह देना। अगर आज आपको ये मौका नहीं मिला तो इसको खाली दिल में मत रखिए, कोशिश कीजिए एक छोटा सा मैसेज या फिर कल जैसे उसको मिले, उस इंसान को मिले, तो अपना जो इमोशन है उसको शब्दों का रूप देकर उस तक जरूर पहुंचाएं। ये जिंदगी खूबसूरत।

रही है वो धीरे धीरे मिडनाइट की दस्तक देने ही वाली है। नए सपने, नई उम्मीदें और नए गीत आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक म्यूजिक को अपने साथ रहने दीजिए और मुझे कहने दीजिए कि मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। कल सुबह एक बार फिर से जल्दी मुलाकात होगी। वैसे म्यूजिक 24/7 आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती। ध्यान रखिए, म्यूजिकल रहिए और जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।